जगाती है कयामत कोई।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद फिफ्थ एडिशन,
3: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
2: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एंट्री फ्री। ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
7: जी हाँ, 10:28 हो गए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुपर हिट सॉन्ग। मेरा नाम शिवम है और एक से बढ़कर एक गाना आप तक, सुनते रहिए, कहीं मत जाइए और एंजॉय भी करते रहिए।

जी हाँ, 10:37 की जो अब 38 मिनट होने को है और आप अपना प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हैं जिसे आप कहते हैं सुपर हिट सॉन्ग। मेरा नाम शिवम है, 100.7 FM रेनबो पर जो है अब शुरू का लखनवी एहसास। चलिए एक और बेहतरीन सा गाना आप तक पहुंचाते हैं और इस मौसम का आनंद लेते हुए आज अपने दिन को और भी शानदार बना

0: 26 बरस का साथ है ये, यादों का सतरंगी एहसास है ये।
1: FM रेनबो लखनऊ सा दूसरा कोई कहां,
2: म्यूजिक मस्ती मैजिक सब है यहाँ।
0: 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास। आप सुन रहे हैं FM रेनबो लखनऊ 100.7, सुरों का लखनवी एहसास।

और आपको बताते चले कि 10:54 हो गया है, प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग को यही करना पड़ेगा वाइंड अप। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बेहतरीन सी लाइन जो आप तक पहुंचानी है वो जरूर सुनिए। हां मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना था, हां मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना था, पर मैं तुमसे कह नहीं पाया। ये शायद

मेरे अंदर प्रेम का नष्ट हो जाना था या प्रेम के बीज का अंकुरित होना भर। हां, मैं तुमसे कह नहीं पाया। बहुत सी बातें करनी थी तुमसे, पर बातों का पहला सिरा ढूंढ नहीं पाया। तुम्हें बताना था कि तुम अच्छी लग रही हो, तुम्हें बताना था कि तुम अच्छी लग रही हो, पर तारीफ का पहला शब्द मिल नहीं पाया। वैसे तो मैं तमाम बातें करता हूं, लिखता हूं, पर तुमसे ही तुम्हारा बखान कर नहीं पाया। हां, मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया। 10:55 शिवम के साथ 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास। मुझे दीजिए अनुमति, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।

और सहायकों के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में शामिल होंगे। अयोध्या मंडल के करीब 12 से 15 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रदेश के सभी जिलों में इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम में विभागीय मंत्री तथा जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। राशन वितरण का कार्य देख रही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी इसमें भाग लेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रसिद्ध गायक और असम विधानसभा के पूर्व सांसद भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि डॉक्टर हजारिका एक महान सांस्कृतिक व्यक्तित्व और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने संगीत और गहन मानवतावाद के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोने वाले उनके कालजयी गीत समाज में भ्रातृत्व और मानवीय मूल्यों की भावना को निरंतर मजबूत करते रहेंगे। ग्रेटर नोएडा और औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में मॉल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम बारिश हुई। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी में सबसे अधिक बारिश वाले 5 जिलों में शामिल रहे। भारी बारिश को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिनों के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्व उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश का येल्लो अलर्ट जारी किया है। वहीं उन्नाव के बीघापुर तहसील क्षेत्र के लालखेड़ा इलाके में बाढ़ पीड़ितों को भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला द्वारा राहत सामग्री बांटी गई। क्षेत्रीय विधायक ने बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। और इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो सुरों का लखनवी एहसास।

नमस्कार, अब सुनिए 11 बजे के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। वो यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों

0: रंग हमारे संग तुम्हारे। सुनते रहिए जिंदगी की सतरंगी धुन 100.7 FM रेनबो।
1: सुरों का लखनवी एहसास।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो सुरों का।

जी हाँ, 11:04 हो गया है और मेरा नाम वही शिवम है और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो। और जैसा कि आपके दिल में जो कुलबुलाहट बनी हुई है उसको हम बता दें कि हाँ हाँ भाई, प्रोग्राम वही है जिसे आप और हम सब कहते हैं संदेश आपके, गीत हमारे। इसमें होती हैं ढेर सारी फोन पे बातें और संदेश जो आप फोन के माध्यम तक सब तक पहुंचाते हैं। तो आपसे एक स्पेशल अपील ये भी है कि अगर आपका फोन हाल फिलहाल में लगा है तो प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दे, क्योंकि जो नए परिवार के सदस्य हैं, जो नए लोग फोन कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको सहूलियत मिल जाए। और आप अगर फोन कर रहे हैं तो इस बात का बेहद ध्यान रखिए कि नेटवर्क एरिया में रहिए, और अगर आप फोन में ही रेडियो सुन रहे हैं और उसी फोन से फोन कर रहे हैं

अक्सर ऐसा होता है कभी कभी कि फोन कट जाए, तो नेटवर्क एरिया में ही रह के फोन करिए ताकि आपकी आवाज औरों तक बेहतरीन सुनाई दे। तो थोड़ी सी आप भी अवेयरनेस देख लीजिए कि भाई आपको कैसे कब कितना बजे फोन करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, औरों को भी थोड़ा सा मौका दीजिए, और हाँ अपने संदेश हम तक तुरंत पहुंचाइए। फिलहाल एक बेहतरीन सा गाना आप तक भेज रहे हैं, हम तुम पिक्चर देख रहे हो किसी थिएटर के अंदर, बड़ा ही पुराना सा गाना और नए, बिल्कुल एकदम नए फील कराने वाला, क्योंकि ये गाने ऐसे हैं ना कि आप कभी भी सुनिए बिल्कुल नया नया सा लगता है।

0: अरे अरे अरे अरे, कैसे अंधेरा अंधेरा हो जाएगा भाई, जब हम लोग बैठे हुए हैं एकदम ढेर सारे बातों के उजाला फैलाने के लिए, तो अंधेरा कैसे हो जाएगा। और अंधेरे की जो लौ है वो जलाने के लिए हमारे साथ हमारे दोस्त भी तो साथ में हैं। तो चलिए करते हैं बातें आज उनसे ढेर सारी। हेलो हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ आवाज आ रही है
1: नमस्ते
0: आपकी।
1: सर।
0: नमस्ते नमस्ते,
1: सर
0: नाम बताइए, परिचय बताइए।
1: FM रेनबो पे हर वक्त धड़कने वाली आपकी अपनी जानी पहचानी श्रोता पिंकी रिंकी बात कर रही हूँ जगदीशपुर शुगर दीवानों के शहर रायबरेली से।
0: तो रिंकी विंकी कैसी हैं आप ये बताइए।
1: हम सर बहुत अच्छे हैं और हम हमेशा एकदम मस्त और चकाचक रहते हैं। सर आप बताइए आप कैसे हैं और आपकी पूरी टीम कैसी है।
0: हमारी भी टीम जो है बिल्कुल एकदम

0: आपके जैसे एकदम चकाचक है।
1: उम्मीद करते हैं कि सर आप लोग भी एकदम मस्त और चकाचक रहे और इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप लोग पेश करते हो कि सर सभी श्रोता सुबह से सुनकर सर एकदम खुश हो जाते हैं।
0: अरे वाह, तो सर हम अपनी पूरी टीम की तरफ से जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे।
1: ऊपर से सर आप महकती और महकती हुई आवाज जब सुबह सुबह सुनाई देती है ना, तो सर हम सभी श्रोताओं का दिन इतना स्पेशल इतना खास हो जाता है, सर बहुत अच्छा लगता है।
0: वाह, इतनी तारीफ चहकती और महकती आज जाकर दो बार तीन बार नहा के आएंगे आज तो।
1: क्या करें सर, आप लोग कार्यक्रम ही इतना बेहतरीन करते हो तो सर हम श्रोताओं का भी फर्ज मतलब फर्ज और कर्तव्य बनता है कि आपके लिए भर भर कर तारीफ करें और भेजें।
0: अच्छा ये बताइए रिंकी विंकी, मौसम कैसा है आपके यहाँ?
1: मौसम बहुत खूबसूरत है, अभी बादल भी थे और धूप भी निकली है तो बादलों की आवाजाही लगा रहती है और बीच बीच में फुहारे वाली जो बारिश होती है ना वो भी होती रहती है।
0: अरे वाह, तो क्या आज संदेश क्या दे रही हैं आज?
1: संदेश ये देना चाहते हैं कि रात में जब भी अपनी बाइक या कार से निकले तो सर ध्यान से मतलब चलाएं, क्योंकि सड़कों पर सर तेज लाइट ना करें क्योंकि सर बारिश की वजह से लोग गिर भी सकते हैं, सावधानी के साथ चलाएं।
0: ये बात बिल्कुल सही कहा।
1: आंखों पर जब लगती है रोशनी तो बहुत से लोग गिर जाते हैं।
0: बहुत बहुत सही बात बोली कि भाई जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो हाई बीम और लो बीम का विशेष ध्यान रखें।
1: सर हो सके तो अगर कोई अचानक से जैसे गिर जाता है तो आपको गाड़ी लेकर भागना नहीं चाहिए बल्कि उसको उठा देना चाहिए, मदद भी कर चाहिए।
0: क्या बात है, ये हुई ना बिल्कुल एकदम जागरूक श्रोता वाली बात है। देख इतनी अच्छी अच्छी बात है।
1: बहुत से लोगों को देखा सर जैसे कोई गिर जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो सर लोग मदद नहीं करते बल्कि बहुत से लोग मदद के लिए मतलब बोलते हैं कि हमारी मदद करिए, बहुत से लोग नहीं करते हैं।
0: बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया रिंकी पिंकी।
1: अच्छा इंसान एक अच्छा नागरिक होने के का कर्तव्य मतलब करें और अपने आसपास लोगों का या अपने आसपास कोई भी व्यक्ति के साथ कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा हो जाता है तो सर अपना मतलब कर्तव्य जरूर निभाएं।
0: बहुत बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया, बहुत ही बेहतरीन रिंकी पिंकी, बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। और कुछ कहना चाहेंगी?
1: सर और हम ये कहना चाहते हैं अपनी दोस्त समा परवीन से कि वो रेडियो आरएल पे जुड़ के हमसे बात कर ले।
0: चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिंकी पिंकी, आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए।
1: बहुत बहुत थैंक यू सर, नमस्ते।
0: नमस्ते दोस्तों, आप भी हमें फोन कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी तो जानते ही है, और हाँ अपने संदेश औरों तक भी पहुँचा सकते हैं। फिलहाल ये वाला गाना सिर्फ आपके लिए।

आगे आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
5: आप सुन रहे हैं FM रेनबो लखनऊ 100.7, सुरों का लखनवी एहसास।
6: जी हाँ, 11:21 हो गए हैं और हमारे साथ फोन लाइन पे भी कोई जुड़ा हुआ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, लीजिए, इन्होंने तो फोन कट करके पीप पीप पीप पीप का साउंड दे दिया, लेकिन हम कहाँ रुकने वाले हैं, हम उठाएंगे फोन और करेंगे ढेर सारी बातें और जानेंगे कि भाई कौन है आज हमारे साथ लाइन पर। हेलो
7: हेलो
6: जी, क्या नाम है आपका? वेरी गुड मॉर्निंग,
7: मैं रोशनी रावत
6: जी, शिवम बात कर रहे हैं, कैसी हैं आप ये बताइए।
7: मैं बहुत अच्छी, आप बताइए कैसे हैं।
6: मैं भी एकदम, सुबह से एकदम मस्त, प्रोग्राम तो सुन ही रहे होंगे, पता तो चल ही गया होगा।
7: बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं, हम तो सुबह से ही जुड़े हुए
6: हैं। तो ये बताइए रोशनी जी, कहाँ से बात कर रही हैं, डिटेल बताइए। फिलहाल अभी चंडीगढ़ में होंगी
7: जी सर।
6: तो ये बताइए कि भाई हमारे यहाँ तो मौसम जो है बारिश वाला है, बादल वादल लगा हुआ है और अभी हल्की हल्की धूप निकली है, उमस वाली गर्मी भी है, आपके यहाँ कैसा है?
7: यहाँ पे धूप निकली हुई है सुबह से, मौसम तो ठीक ठाक
6: है। मौसम ठीक ठाक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आज हमारे सुनने वालों से?
7: कहना यही चाहते हैं।
6: हाँ हाँ,
7: लोग दूसरे को उपदेश देते हैं,
6: खुद पर भी एक बार ध्यान दें, खुद के गिरेवान में एक बार झांक लें, है ना, कि मतलब दूसरों से कहने से पहले आप एक बार अपने आप को भी एक बार तौल लें, है ना। क्या बात है, अच्छी बात है, ये भी जरूरी हो जाता है कि होता है ना कि बहुत से लोगों की आदत होती है एक तरीके से कि कुछ ना कुछ मीन मेख, कुछ ना कुछ शिकायत निकालते ही निकालते हैं, तो ऐसा करना भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनके जो है आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करना हो जाता है, है ना
7: जी सर। और वो कहना ही नहीं जरूरी है, क्योंकि हम जो बात अगर दूसरे से कह रहे हैं तो खुद पे भी अमल करनी चाहिए। हम हमारे कुछ लिसनर ही हैं,

0: को उपदेश देते रहते हैं भर भर के, लेकिन खुद पे कभी ध्यान नहीं देते।
1: ये भी बिल्कुल सही बात है, उन लोगों को भी ध्यान
0: उनकी
1: देना
0: चाह
1: चाहिए।
0: जितना कर लो, लेकिन ढीठपन करना है तो करना है।
1: बिल्कुल। तो देखिए, ये जरूरी हो जाता है ऐसे समय में कि जब हम किसी को ऐसी बातें करते हुए देखें कि भाई हाँ आप गलत हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई सभी इस जीवन में जितने भी लोग आए हैं सभी अपने अपने जीवन का हिस्सा अपना जिएंगे, तो उनकी कैसी जिंदगी है क्या है उनको ये सुझाव देने से पहले अपने आप को एक बार सही कर लें, है ना।
0: जरूर
1: तो
0: देखना चाहिए। हाँ जी,
1: रोशनी रावत जी, ये बताइए कि अभी जो आप फोन की हैं तो कितनी देर से फोन लगा रही थी आप।
0: अरे वही, मेरा तो शुरू शुरू में कम से कम 4 बार बोल गई, उठा ही नहीं कॉल
1: अरे
0: उसके पास।
1: चलिए, तो कैसा लग रहा है फोन पे बात करके।
0: बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक यही हो रहा है कि ना, जैसे कि कोई उम्मीद दी जाए और वो सफल हो जाए,
1: चलिए बढ़िया
0: अच्छा लग
1: है।
0: रहा है।
1: तो अच्छा लगा आपसे बात करके रोशनी जी, आप ऐसे ही फोन
0: हाँ
1: करते
0: जी,
1: रहिएगा,
0: मुझे
1: जुड़े
0: भी
1: रहिए।
0: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: चलिए, बहुत
0: एक हफ्ते
1: शुक्रिया।
0: पहले लगी थी, मेरी 3 तारीख को बात हुई तो फिर अब लगाएंगे, बीच में कॉल ही नहीं लगाया था।
1: कोई बात
0: ये हमें
1: नहीं,
0: पता ना, अपना टाइम भी जब हो जाएगा तभी लगाएंगे, बीच बीच में ही लगाते कॉल।
1: बिल्कुल। और देखिए, आपने इतने दिन बाद फोन लगाया, लग गया, बात हो गई।
0: हाँ जी, अब 1 हफ्ता बाद।
1: बिल्कुल, चलिए टाटा एंड बाय बाय, ध्यान रखिएगा। तो
0: बाय। हाँ जी, बाय।
1: भाई 11:25 और एक बेहतरीन सा गाना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: 11:30 और शिवम आज आपके साथ है। प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके, गीत हमारे। इस दौरान हम किसी से जुड़े हुए हैं फोन पे और उनसे हम करेंगे बात, देखते हैं क्या कहती हैं वो। हेलो।
5: हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका, पर्चे बताइए।
5: जी मैं जिला सीतापुर काजी कमालपुर बेलगावा से तरन्नुम अंसारी बात कर रही हूँ।
4: थोड़ा सा और आहिस्ते बोलिए प्लीज, और फिर से बोलिए।
5: जिला सीतापुर काजी कमालपुर बेलगावा से तरन्नुम अंसारी बात कर रही हूँ सर।
4: तरन्नुम अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और ये बताइए कैसी हैं आप, क्या कर रही थी।
5: मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं।
4: मैं तो काला सा हूँ।
5: काला सा?
4: हाँ मैं अच्छा हूँ।
5: क्यों, ऐसा क्यों बोला सर आपको।
4: और ये बताइए कि संदेश क्या देंगी आप।
5: संदेश मेरा सर यही है कि आजकल बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो सब लोग अपना अपना ध्यान रखें। बस यही मेरा संदेश है।
4: हाँ, क्योंकि सर्दी जुकाम सबको बहुत हो रहा है जल्दी। हाँ, जल्दी है ना,
5: आजकल सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए सब लोग अपना अपना ध्यान रखें।
4: वायरल हो जा रहा है। तो ये बताइए आप अपना ख्याल कैसे रखती हैं, परिवार का ख्याल ऐसे समय में कैसे रखती हैं।
5: परिवार का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हूँ, अपना भी रखती हूँ, अपने बेटे का, अपने हस्बैंड का, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। आजकल ठंडा मौसम है, जो है नमक का पानी गुनगुना हल्का पीते रहो, बाकी काढ़ा बनाकर पीते रहो।
4: ये बात सही है कि मतलब प्रिकॉशन आप पहले ही रहेगा, सारी चीजें अगर आप पहले ही आप है तो आप आने वाली परेशानियों से दूर रहते हैं, है ना।
5: हाँ ये तो बात सही है, अगर पहले से जैसे कोई चीज का ध्यान रखना है तो रख लीजिए, वरना बाद में जो है पछताना पड़ता है।
4: बात तो सही कही है आपने। चलिए और जी बताइए।
5: और सर ये जो रिंकी जो अभी फोन किया था, कह रही थी कि जो है समा परवीन से बात करना चाहते हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कॉल करें तो दोबारा जरूर ये कहें कि समा परवीन से कैसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे बात करना चाहते हैं, वो समझ नहीं पाई।
4: चलिए अच्छी बात है, अगर वो आपकी बात सुन रही होंगे तो आप तक ये संदेश।
5: वो समझ नहीं पाई इसीलिए पूछ रही हूँ।
4: चलिए अगर आप तक अगर हम तक संदेश आएगा तो हम आप तक पहुँचा देंगे, या किसी भी तरीके से कोई भी होगा तो हम जरूर आप तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। 11:33 हो गए और अलीजा खान, ब्रिजेश सिंह, वकील अहमद, बाबू अंसारी, मोहम्मद आसिफ और हिंदुस्तानी ब्रह्मेश, इन सब का ईमेल आया है। लेकिन एक गाना सुनेंगे, उसके बाद लौट के आएंगे, तब आप सबका ईमेल पढ़ा जाएगा।

0: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद फिफ्थ एडिशन,
1: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
0: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी।

0: जी यहाँ 11:40 हो गया है और बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से इन्होंने ईमेल किया है। लिखते हैं, गुड मॉर्निंग डियर शिवम सर जी, प्रोग्राम इन्हें अच्छा लग रहा है और इनका संदेश ये है कि प्रकृति हमारी जिंदगी का अनमोल हिस्सा है। पेड़ पौधे, नदियां, हवा और धरती हमें जीवन देती है। आइए हम प्रकृति की रक्षा करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पानी की बचत करें। प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से ये हमें ईमेल कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं और ये रहने वाले राजा कटरा अहमदपुर बाराबंकी के हैं और ये संदेश जो दे रहे हैं कि तालाब के किनारे पर जो बच्चे रहते हैं, बच्चों का विशेष ख्याल रखें और अपने बच्चों को तालाब या नदी में नहाने न जाने दें। बारिश के टाइम में अक्सर पानी का स्तर ज्यादा होता है, ऐसे में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और बाबू अंसारी ने अपने एफएम स्टेशन का, एफएम जो एक रेडियो है, उसका इन्होंने पिक भेजी है। ये बहुत पहले पुराने टाइम में ऐसे रेडियो होते थे जब लगा के किसी तरह इसको एडजस्ट करके कहीं, और हम गाड़ियों में इसको सुना करते थे, तो उसकी इन्होंने रेडियो की जो है ट्रांजिस्टर की, इन्होंने हमें एक पिक भेजी है। वकील अहमद, गुड मॉर्निंग, और बड़ी तारीफ लिखे हैं कि बारिश होने से रोड पर पानी भर जाता है, कोई वाहन हो तो कृपया धीमे चलाएं क्योंकि अगर उससे पानी के छींटे किसी कपड़ों पर पड़ते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। कटका हथौरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी और अहमद नवाब को इन्होंने डेडिकेट किया है ढेर सारी बातें। अगला मेल है ब्रजेश सिंह जी का, लिखते हैं, शिवम भैया जी नमस्ते, आपको भी नमस्ते। जो लोग ड्राइव करते समय रील बनाते हैं, भाई साहब देख लीजिए, तो आपकी रील जो है बिल्कुल एकदम अब समझ में आ रही है कि कैसे रील बना रहे हैं। तो ये इन्होंने लिखा है कि भाई एक हाथ छोड़कर रील बनाते हैं ऐसा बिल्कुल भी ना करें और रियल लाइफ में कुछ और होने लगता है। गाने इनको बड़े ही पसंद आ रहे हैं, भाई गाने तो हमें भी बड़े पसंद आ रहे हैं। अलीजा खान साहब हैं, लिखती हैं, हेलो गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, गाने इनको अच्छे लग रहे हैं। उनका संदेश है कि बारिश के मौसम चल रहा है, अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रखें। और रोशनी रावत दीदी बहुत प्यारी हैं, ऐसा इनका लिखना है। देखिए भाई साहब, दोस्ती भी हो रही है। हिंदुस्तानी ब्रह्मेश और अजय सिंह कुमार और आर्यन मिश्रा जी का ईमेल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक श्रोता है हमारे साथ लाइन पे बनी हुई, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
1: सर मेरा नाम सरोजनी राजपूत है, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से बात कर रही
0: हूँ। सरोजनी राजपूत जी लखीमपुर खीरी से बात कर रही हैं, कैसी हैं आप?

0: छह सर।
1: और कितने दिनों बाद फोन लगाया है आपका?
0: पहली बार कॉल बात हो रही है।
1: तो आपकी अपनी आवाज रेडियो में सुन के कैसा लग रहा है?
0: सर बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा ये बताइए कि मौसम कैसा है आपके यहाँ?
0: सर बादल छाए हुए हैं पर धूप है।
1: अच्छा बादल और धूप दोनों है।
0: दोनों है।
1: चलिए तो आज क्या कहना चाहेंगी सुनने वालों से?
0: सर कहना ये चाह रहे हैं जैसे कि इधर बाढ़ चल रही बहुत ज्यादा, तो लोग बिजली के तार इधर उधर छोड़ देते हैं, तो पानी पे लाइट उतर सकती है और इधर उधर जा सकती है, तो मतलब कि तार छोड़े नहीं।
1: हाँ बिल्कुल, मतलब कहने का ये है कि पानी चारों तरफ है तो खुले हुए तार बिल्कुल भी न छोड़े, जहाँ भी हो बिजली उसे ऑफ कर दे या बंद कर दे तो ज्यादा अच्छा है ना।
0: और छोटे बच्चों को जैसे इधर उधर ज्यादा जाने ना दें, गड्ढे खुदे हों वहाँ करीब ना जाने दें क्योंकि बाढ़ चल रही ज्यादा।
1: हाँ बिल्कुल, पानी से दूर रखे बच्चों को, भाई छोटे बच्चे हैं वो बता नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, इधर उधर धीरे से चुपके से निकल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना।
0: जी सर।
1: बहुत अच्छा लगा आपको फोन करके, आप ऐसे ही जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सर हमारी फ्रेंड है उनका नाम ले लें?
1: बिल्कुल जल्दी से नाम ले लीजिए।
0: रोशनी रावत जी हैं, सविता राव जी हैं, नीलू शर्मा जी हैं और सभी लोग जितने लोग सुन रहे हैं। सर रात का प्रोग्राम जो रीता मैम ने किया था बहुत अच्छा किया।
1: अरे वाह, उनकी तरफ से हम और आपको सबको बहुत शुक्रिया बोल रहे हैं। ओके बाय।
0: बहुत ही ज्यादा पसंद आया।
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों अब एक बेहतरीन सा गाना आपके लिए।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: Keep listening to 100.7 FM Rainbow. Suron ka Lakhnavi Ehsaas.

11:52 हो गए हैं और ढेर सारी बातें आपसे कर लिया है और बहुत सारे ईमेल अभी भी हैं। अनिल कुमार जी लिख रहे हैं, शिवम सर जी प्रोग्राम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और आपका नया रिले ट्रांसमीटर लगा है गदानिया में, उसकी रेंज यहां उत्तराखंड तक साफ सुनाई देती है। एफ एम रेनबो के सारे शो सुनते हैं। संदेश ये है सर, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है भाई की तरह। 26 अगस्त तक जो बाढ़ आई थी नेपाल में, बहुत से लोग बेघर हो गए थे, सब कुछ पानी में बह गया था, उनकी मदद करनी चाहिए। कुछ पैसे डोनेट कर सकते हैं नेपाल देश को, उनसे उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और इन्होंने भी ऐसा किया है, ग्राम पता गेंडाखली नंबर 1 टनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से इन्होंने हमें ईमेल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए। और नमस्ते भैया, ऐसा कहते हैं दिव्याता राज वर्मा जी लिखते हैं, हेलो सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को और आशा करती हूं कि सभी अच्छे होंगे, सभी लोग अपना ध्यान रखें।

0: और परिवार में सबका ध्यान रखे। और उन्होंने लिखा है कि आम होता है जो मिल जाता है, मतलब जो साधारण होता है वो मिल जाता है, पर खास वो होता है जो काश होता है, मतलब शायद काश वो मिल जाता है, ऐसे कुछ करके जो होता है वो खास होता है, ऐसा इनका कहना हुआ है। गुलफ्ता सिद्दीकी जी ने लिखती हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? और ये संडीला से हमें ईमेल कर रही हैं, प्रोग्राम इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और एक गाना की इन्होंने बताया कि गाना बिल्कुल एक नंबर का बज रहा है भाई साहब, ओहो वेरी गुड वेरी गुड। और ये लिखते हैं हिंदुस्तानी ब्रह्मेश जी, लिखते हैं कि सर प्रणाम, पिंकू सोनी टिकायत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूँ, और लिखते हैं कि सबको सबकी सुनो पर अपने दिल की करो, इन्हें प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए। और अलीजा लिखती हैं, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे गाने बज रहे हैं, मेरा संदेश यह है कि बारिश का मौसम चल रहा है तो अपना ध्यान जरूर रखें। और अब देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पे जुड़ा हुआ है। हेलो,
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: सर, हमारा नाम अल्तमस अली है जी।
0: अल्तमस जी, कैसे हैं आप, क्या करते हैं
1: सर, हम पढ़ाई करते हैं,
0: और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गांव भंसड़िया, जिला लखीमपुर खीरी।
0: लखीमपुर खीरी से। और जल्दी से अपना संदेश पहुंचा दीजिए क्योंकि अब हमें प्रोग्राम वाइंड अप करना है।
1: जी सर, हमारा संदेश यह है कि बारिश जैसे हो तो घर से ना निकले क्योंकि सर्दी बिजली उससे कई बार धोखा भी हो सकता है हमारी जान को। और बाइक में जो हॉर्न होता है तो प्लीज, कुछ लोग होते हैं तो बहुत तेज उसको बजा कर निकलते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें, और उससे छोटे बच्चों के जो दिमाग होता है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बहुत ही प्यारा संदेश के साथ आपने प्रोग्राम को वाइड अप कराने में हमारी सहायता की है, बहुत शुक्रिया अल्तमस आपका फोन करने के लिए।
1: सर, एक चीज हम कहना चाहते हैं।
0: जी जल्दी से बोलिए।
1: जी सर, साहिबान सर इन्हें बहुत दिनों से कॉल नहीं किया है, प्लीज वो कॉल कर लें।
0: ओके, अगर वो सुन रहे होंगे तो जरूर फोन करेंगी।
1: बात बहुत दिन से हमने नहीं सुनी है।
0: चलिए, अगर वो सुन रहे हैं तो जरूर फोन करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। और अब मुझे यानी शिवम को दीजिए अनुमति। और शिखा आई हैं, बड़े ही अच्छे सा ढोकला बना के लिए, भाई साहब मैं जा रहा हूँ खाने, आप जरूर एंजॉय करिएगा ये वाला गाना।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में दो दिवसीय यूपी टेक्स 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और निवेश से जुड़े पत्रों और चेक का वितरण किया। कार्यक्रम में प्रदेश में विभिन्न निवेश संबंधी समझौतों का आदान प्रदान भी किया गया। वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों के साथ संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टेक्सटाइल की पहचान आज की नहीं हजारों साल की विरासत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुनर है, मानव संसाधन है, देश का सबसे बड़ा बाजार है और सबसे युवा कार्यबल भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 साल में प्रदेश में सरकार ने विरासत को आधुनिक तकनीक, निवेश, नवाचार और वैश्विक बाजार से जोड़कर औद्योगिक विकास की नई कहानी लिखी है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का रास्ता खोलती है। उन्होंने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में विश्व साक्षरता दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए लिखा है कि साक्षरता केवल अक्षर का ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सशक्तिकरण, गरिमापूर्ण जीवन और नए अवसर को द्वार भी खोलती है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। आज वो प्रभु टाउन में सर्राफ व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे, वहीं अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी करेंगे। कल श्री गांधी जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में भाग लेंगे। बागपत में कल ईस्टर्न फेरी फेरल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। कल दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
5: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
4: तो आइए 12-20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एंट्री फ्री। ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।

भिगा दे पूरी तरह। और सच में भिगा तो रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है और मौसम भी इतना अच्छा है, इतना प्लीजेंट मौसम हो गया है कि इस प्लीजेंट मौसम में साथ हो एफएम रेनबो का तो क्या बात है। तो वही इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम शत्रुपा में। दोस्तों कहते हैं परिधानों से सजकर जब वो महफिल में आती है, परिधानों से सजकर जब वो महफिल में आती है, सादगी में भी एक नया रंग लाती है। ये फैशन तो बस एक जरिया है उनके निखार का। जी हाँ, ये फैशन तो बस एक जरिया है उनके निखार का। वो अपनी अदाओं से हर लिबास में चार चांद लगाती है। तो वही इन प्यारी प्यारी लाइंस ने सारा राज बता दिया है। जी हाँ, कि आज क्या बातें होने वाली हैं। तो आज हम बात करेंगे फैशन की, स्टाइल की, जो हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। तो मौसम चाहे कोई भी हो, पर हमें अपने फैशन और स्टाइल को अप टू डेट रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जैसा कि इस समय बरसात का मौसम है, जी हाँ बरसात का मौसम है, तो हमें अपनाना होगा वाटरप्रूफ स्टाइल। क्यों, क्या लगता है? जी हाँ, मन तो मतलब जितनी भी हमारी गॉर्जियस गॉर्जियस लेडीज इस समय प्रोग्राम सुन रही होंगी ना, वो ये सुनकर इतना खुश महसूस कर रही होंगी कि भाई फैशन और स्टाइल जो इस सीजन में थोड़ा स्पॉइल हो जाता है, तो उसको भी हम मेंटेन रख सकते हैं। और कैसे रख सकते हैं वो आज बताने वाली है शिखा आपको। तो बस आपको करना क्या है, आपको बस जुड़े रहना है हमारे साथ, क्योंकि इंटरटेनमेंट का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और एक से बढ़कर एक चीजें, जी हाँ जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। तो फिलहाल ये गाना आ रहा है आप तक, और बातें तो अभी हमारे पास, जब शिखा हो साथ तो भाई बातों का पिटारा तो खुला ही रहता है, और अभी बातें अपनी जारी रखेंगे लेकिन इस बेहतरीन से ट्रैक के बाद।

जी 12:14 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शत्रुपा अपनी दोस्त शिखा के साथ। और एक इतना बेहतरीन सा ट्रैक आपने अभी सुना, इस दर्द दिल की बारिश। जी हाँ।

जी 12:22 का वक्त और इतना प्यारा सा बेहतरीन सा ट्रैक अभी आपने सुना। और ये ट्रैक देखिए ना, जो आज का टॉपिक है ना उससे रिलेटेड बहुत कुछ किया गया। जी हाँ, अगर आपने बहुत ही दिल से सुना होगा, क्योंकि इतना मेलोडियस ट्रैक है ये कि इसमें जब भी आप इसको सुनिए ना, तो आप कहीं ना कहीं खो जरूर जाते होंगे। तो दोस्तों, जब ये गाना आपने सुना होगा ना, तो आज आपने इस टॉपिक से जरूर से कोरिलेट करा होगा कि आज जब इतना अच्छा टॉपिक है कि भाई फैशन है और हम महिलाओं के लिए बहुत खास है ये फैशन। और जब हम फैशन में होते हैं, जी हाँ, लाइट फैशन भी अगर हम कर लेते हैं, तो हम क्या लगते हैं? जी हाँ, हम लगते हैं स्टनिंग। और तब लोग कहते हैं चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, सीजन कोई भी हो, जी हाँ, हमने आज बात करी कि सीजन कोई भी हो, लेकिन हमारा जो स्टाइल है, हमारा फैशन है, वो अप टू डेट रहना चाहिए। तो बरसात के मौसम में फैशन का मतलब केवल अच्छा दिखना नहीं, बल्कि ऐसी एक्सेसरीज को चुनना है जो पानी और नमी को सह सके, आसानी से साफ हो जाए और टिकाऊ रहे। दोस्तों, मानसून की जो बारिश होती है ना, शहर को गुलजार कर देती है, लेकिन फैशन लवर्स के लिए कुछ ऐसी चुनौतियां ले आती है जिसमें उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो आज आपको बारिश से बचाने और स्टाइलिश दिखाने के लिए बातें करने वाले हैं हम वाटरप्रूफ एक्सेसरीज की। तो बातें अभी हम करेंगे आपसे स्टाइल की, तो आप बिल्कुल कान लगा के हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि इतनी अच्छी बातें होने वाली है ना कि आप उसको आगे फॉलो करेंगे। तो बात अगर करते हैं वाटर रेसिस्टेंट बैग की,

दोस्तों बरसात में लैपटॉप, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और अन्य जितनी भी हमारी नेसेसरी चीजें होती हैं उनको सेफ रखना सबसे बड़ी चुनौती हो जाता है। ऐसे में वाटर रेसिस्टेंट बैग, जो वाटरप्रूफ बैग होते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ये बारिश के पानी को अंदर जाने से ना केवल रोकती है बल्कि आपको एक स्टाइलिश लुक भी देते हैं। तो आज के सेगमेंट में बातें तो अभी और भी हैं, उससे पहले क्या बनता है? जी हाँ, उससे पहले बनता है एक म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि हमारे जितने लिसनर्स हैं ना, उनका मन करता है कि एक से एक बढ़कर बेहतरीन ट्रैक मिलते रहे। और इस सीजन में साथ में चाय हो और गर्मा गर्म पकौड़े हो तो क्या बात है। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और लौट कर आते हैं, बातें करते हैं ढेर सारी आपसे।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
4: RHL Gold TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

जी 12:34 का वक्त और शिखा है आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में। अच्छा दोस्तों, हम महिलाओं की जो बात होती है ना, जब कोई भी बात होती है हमें टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, कोई किसी भी चीज को लेकर मन में चीजें चलती ही रहती हैं। क्यों होता है ना अक्सर ऐसा कि भाई आज खाना बनाना है तो टेंशन, आज यहाँ जाना है तो टेंशन, कैसे सारी चीजों को मैनेज करना है, बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है तो टेंशन, कहीं शॉपिंग पे जाना है, बस शॉपिंग पे जाने के टाइम हमें कोई टेंशन नहीं होती है। तो जब टेंशन की बात होती है तो बरसात का सीजन हो और हमें टेंशन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस बरसात के सीजन में हमें टेंशन नहीं लेनी है, जी हाँ। और क्योंकि जो हमारी कभी कभी क्या होता है ना, हर छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो हमें खूबसूरत बना देती हैं। जैसे अगर स्लीपर्स की बात करें, हमारी सैंडल्स की बात करें, तो हम बहुत चूजी होते हैं उनको सेलेक्ट करने में। लेकिन बरसात के सीजन में एक जो ये डर रहता है कि कहीं हम फिसल ना जाएं, और होता ही होता है ये डर, क्योंकि जो हमारी स्लिपर्स होती हैं, जो हमारी सैंडल होती हैं, वो चिकने तले की होती हैं, जिससे फिसलने का जो खतरा होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में चमड़े और कपड़े के जूतों की बजाय रबर, पीवीसी या ईवीए से बने सैंडल और फ्लोटर्स बेस्ट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि ये जल्दी सूखते हैं और अच्छी पकड़ देते हैं। और एक सबसे अच्छी बात, क्योंकि हमको, हम लोगों को क्या होता है ना, हर चीज़ में स्टाइलिश दिखना होता है। भाई हम सूट पहनते हैं तो चूजी होते हैं, साड़ी पहनते हैं तो चूजी होते हैं कि भाई ऐसी नहीं, ऐसे दिख, ऐसा ऐसी एसेसरीज हमें ट्राई करनी है। तो जब बात सैंडल की होती है तो उसके लिए कैसे नहीं हो सकते हैं हम कॉन्शियस। सबसे अच्छी बात यह है कि जो जिन भी अभी सैंडल की हमने बात करी, जी हाँ, आपको हमने बताया कि पीवीसी या ईवीए से बने सैंडल और फ्लोटर्स जो होते हैं वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, और साथ ही साथ इनको पहनकर आप स्टाइलिश भी दिखेंगे। अगर आप फैशन ट्रेंड को फॉलो करती हैं तो रंग बिरंगे स्लीक डिजाइन वाले लेदर शूज व रेन बूट्स को भी ट्राई कर सकती हैं। तो भाई कितने ढेर सारे ऑप्शन आज आपको शिखा ने बता दिए। तो अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी विचार नहीं किया था इन पर, तो अब समय है इनको लेकर सोचने का। और सोचने का क्या, मैं कहती हूँ ले लीजिए। जी हाँ, क्योंकि स्टाइलिश दिखने के साथ साथ, सुंदर दिखने के साथ साथ एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो है हमारा कंफर्ट। तो ये सारी चीजें जो है ना, एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए इस सीजन। तो अभी और भी बातें हैं, लेकिन जितने हमारे श्रोता हैं वो कह रहे हैं, भाई शिखा बातें तो तुमने इतनी काम की कर ली, लेकिन गाना कब भेजोगी एक बहुत ही प्यारा सा। तो भाई आपके दिल का जो हाल है वो हमने सुन लिया है, तो एक बेहतरीन सा ट्रैक आ रहा है आप तक। Oh,

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow. सुरों का लखनवी एहसास।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL Gold TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

जी दोस्तों, 12:43 का वक्त और शिखा है साथ आपके प्रोग्राम शत्रुपा में हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं फैशन की कि कैसे इस बरसात के सीजन अपने आप को हम मेंटेन रखें, अपने आप को ऐसा दिखाएं कि भाई मौसम तो चाहे कोई भी हो, हमें लगना है गॉर्जियस।

तो आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो धड़क। जी हाँ, आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए प्यार से, एहसास से, और सुनते रहिए 100.7 एफएम, सुरों का लखनवी एहसास।

जी 12:50 और शिखा है आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में। और दोस्तों हम बातें कर रहे हैं फैशन की, और इतना प्यारा सा ट्रैक जब आपने सुना ना, तो आपसे भी यही कहेंगे लोग कि तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, क्योंकि भाई जो हम लेडीज है ना, उनका उनकी जो सादगी है, उनकी जो सिंप्लिसिटी है, और उसमें जरा सा फैशन का ये जो टच ऐड हो जाता है ना, तो फिर क्या ही कहना। और दोस्तों जो हमारी सुंदरता है ना, उसमें छोटी छोटी चीज़ों के का जो यूज़ है वो उसको बढ़ा देती है। जी हाँ, उसको कहें कि 4 गुना उसको बढ़ा देती है। और जब बात हो हाथ में पहनने वाली घड़ी की, तो बात ही क्या। लेकिन बारिश के मौसम में इन्हें कैरी करना एक चिंता का कारण बन जाता है। लेकिन अब ये टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप ट्राई कर सकती हैं वाटर रेसिस्टेंट घड़ियां, जो नमी और पानी के संपर्क में भी सुरक्षित रहती हैं। और एक और चीज जिसके लिए हम रहते हैं बहुत ज्यादा केयरफुल, वो क्या है, और उस चीज के लिए इतने नहीं ज्यादा केयरफुल रहते हैं, वो हमारे हमारी जान से ज्यादा हमें प्यारा है। तो अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन करूं, तो शायद सभी का एक ही आंसर आएगा। जी हाँ, सभी का एक आंसर आएगा, और वो है हमारा मोबाइल। और वो हमारा मोबाइल ही क्या, वो आजकल हमारा पार्टनर बनता जा रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा समय हम उसके साथ ही बिताते हैं। और लगता है कि भाई हम भीग जाएं, लेकिन हमारा मोबाइल नहीं भीगना चाहिए। तो इसीलिए मोबाइल पाउच हर स्मार्टफोन यूजर की जरूरी एक्सेसरीज बन गया है। बारिश हो, ट्रिप हो, बीच हो, स्विमिंग पूल हो, या किसी भी पानी वाले माहौल की बात अगर हम करें, मोबाइल पाउच आपके फोन को पानी, नमी, धूल और छोटी छोटी चीजों से सुरक्षित रखता है। और सबसे अच्छी बात यह कि ये बहुत ही कम कीमत पे आपको मिल जाता है, लेकिन ये आपके लुक को एनहांस करता है। तो भाई अब एक गाना बिल्कुल मैं भेजने वाली हूँ, क्योंकि हमारे जो जितने लिसनर्स है ना, उनके मन की बात मैं पढ़ लेती हूँ। तो चलिए, एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आप तक, एंजॉय करते हैं।

जी दोस्तों, 12:55 का वक्त, और ये वक्त कह रहा है कि भाई शिखा, बातें तो बहुत कर ली, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी शिखा आज आपने अपने लिसनर्स के साथ, लेकिन अब ये टाइम कह रहा है कि भाई वाइंड अप करना होगा प्रोग्राम शत्रुपा को यहीं पर, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि अगला प्रोग्राम होठों पे तेरी बात भी आप इंजॉय करेंगे अपनी दोस्त के साथ। तो बस ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसिद्ध गायक और असम विधानसभा के पूर्व सांसद भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉ हजारिका की आवाज ने असम की आत्मा और पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि इस महान गायक के गीतों ने लोगों को करीब लाने का काम किया। अपने संगीत के माध्यम से डॉक्टर हजारिका ने अनगिनत लोगों के विचारों और आकांक्षाओं को खूबसूरती से व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। वो यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में शामिल होंगे। अयोध्या मंडल की करीब 12 से 15,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रदेश के सभी जिलों में इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री रामनगरी में विकास की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। चित्रकूट में भाद्रपद अमावस्या स्नान पर्व के अवसर पर 10 से 11 सितंबर को बांदा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल और वाहनों से रवाना होंगे। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात में बदलाव करते हुए कई मार्गों पर भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया है। भक्तों की सफल और सुरक्षित यात्रा को लेकर आज से ही ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बांदा से चित्रकूट जाने वाले भारी वाहनों पर अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंध रहेगा। भारी वाहन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के रास्ते आवागमन कर सकेंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मानसून के बाद अक्टूबर से पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सड़क की मरम्मत का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अभियान से जुड़ी सभी तैयारियां समय से पूरी करने को कहा है, ताकि पेयजल योजनाओं के लिए खोदी गई सड़कों को जल्द दुरुस्त कर ग्रामीणों को राहत दी जा सके। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। ये मैच जीतने पर भारत सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित होगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रंग हमारे संग तुम्हारे, सुनते रहिए जिंदगी की सतरंगी धुन 100.7 FM रेनबो।

जी 1:04 और आपके दिल की बात जाने हाजिर हो गई है शिखा, कार्यक्रम होठों पे तेरी बात लेकर। तो हर रोज की तरह आज भी बातें होंगी बहुत ही दिलचस्प, और एक विषय होगा साथ में जिस पर हम बातें करेंगे कि क्या सोचते हैं आप उस विषय पर। वो विषय आपको बताया जाए उससे पहले एक गाना एंजॉय कर लिया जाए। जी हाँ, आप बोल रहे हैं कि यस शिखा प्लीज एक गाना सेंड कर दो, तो भाई ये गाना आ रहा है आप तक, फिर उसके बाद लौट कर आते हैं और आपको बताते हैं कि आज का क्या होने वाला है विषय, कौन से विषय पर आज आज अपने विचार आपको व्यक्त करने हैं। जी हाँ, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा ट्रैक।

0: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में दो रोज़ा यूपी टैक्स 2026 प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तकरीब के दौरान वज़ीर-आला ने एक नुमाइश का इफ्तिताह किया और सरमायाकारी के दस्तावेज और चेक तकसीम किए। टेक्सटाइल और मलबूसात के शोबों में सरकर्दा सनतकारों से बात करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि रियासत की टेक्सटाइल शनाख्त कोई हालिया वाकया नहीं है बल्कि हज़ारों साल पुरानी मीरास है। उन्होंने कहा कि रियासत के पास हुनर, इंसानी वसायल, मुल्क की सबसे बड़ी मंडी और सबसे नौजवान अफरादी क़ुव्वत है। वज़ीर-आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान रियासती हुकूमत ने विरसे को जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, इख्तिराअत और आलमी मंडी के साथ जोड़कर सनअती तरक्की की एक नई कहानी लिखी है।
1: पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी समृद्ध विरासत को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़कर एक नई इंडस्ट्रियल स्टोरी लिखने की व्यवस्था भी यूपी के अंदर हम लोगों ने तैयार की है।
0: बैनुल अक्वामी यौम ख्वानदगी के मौके पर वज़ीर तालीम प्रहलाद जोशी ने कहा कि ख्वानदगी इल्म, मौके और बेहतर मुस्तकबिल के दरवाजे खोलती है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो तालीम को फ़रोग दें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी सीखने से महरूम ना रहे। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में रियासत को आलमी यौम ख्वानदगी पर मुबारकबाद देते हुए लिखा कि ख्वानदगी सिर्फ हरूफ के इल्म तक महदूद नहीं है बल्कि बाख्तियार बनाने, बावक़ार ज़िंदगी और नए मौक़े के दरवाजे भी खोलती है। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा करेंगे जहां वो आंगनवाड़ी वर्करों और मुआविनीन के लिए रियासती सतह की एजाजी तकरीब में शिरकत करेंगे। अयोध्या डिवीज़न से तकरीबन 12,000 से 15,000 आंगनवाड़ी कारकुनान इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ज़िला मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी ने बताया कि महकमे के वज़रा और अवामी नुमाइंदे भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। राशन की तकसीम की निगरानी करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ख़वातीन भी शिरकत करेंगी। बारिश और डैमों से पानी छोड़े जाने की वजह से रियासत के 25 अजला सैलाब की जद में हैं। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ सैलाब से मुतासर इलाकों की सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी और बचाव काम जारी है। एक रिपोर्ट।
2: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पीलीभीत में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से शारदा और देवहा नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पूरनपुर, सदर, कलीनगर और बीसलपुर तहसील क्षेत्र के करीब 3 दर्जन गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ट्रांस शारदा क्षेत्र में फसलें और संपर्क मार्ग डूबे हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस दरमियान महकमे मौसमियात ने आज रियासत के मशरकी अजला में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। लोकसभा में हिजब मुखालिफ के लीडर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी आज अपने पार्लियामानी हलके रायबरेली के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो आज प्रभु टाउन में सर्राफा ताजिरों के साथ मीटिंग करेंगे और मुख्तलिफ तंजीमों के वफूद से भी मुलाकात करेंगे। कल जनाब गांधी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग में शिरकत करेंगे। बागपत में ईस्टर्न पेरिफरल एक्सप्रेसवे पर कल हुए सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। एक और अकीदतमंद ने कल दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में जख्मी 19 अफराद अस्पताल में जेरे इलाज हैं। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा में माल बरदार और मुसाफिरों की आमदोरफ्त को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे के साथ राबते को बेहतर बनाने के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क की तामीर की तजवीज़ पेश की है। कल लखनऊ में

जी दोस्तों, 1:16 का वक्त और शिखा है आपके साथ प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। दोस्तों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो हमारी अनकही बातों को भी सुन लेता है, होता है ना। कोई ना कोई एक ऐसा खास जरूर होता है जो हमारी अनकही बातें, जिनको हम कहते ही नहीं है, लेकिन वो तुरंत उस चीज को भांप लेता है। और हमारी हर विश को झटके में पूरा कर देता, एक चुटकी बजाते ही पूरी कर देता है। और आपको पता है, जिंदगी में किसी ऐसे इंसान का होना आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो भाई, आपके जीवन में कौन है ऐसा? जी हाँ, आज का टॉपिक कुछ हमने इसी से रिलेट करके हुए लिया है। तो आज का विषय हम आपको, आपके लिए यही रखना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कौन है जो आपके बिना बोले आपकी बातों को समझ जाता है और आपकी कोई भी विश को वो झट से पूरी कर देता है। और मुझे यकीन है कि कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा। तो जल्दी से हमें लिख भेजिए अपने मेल्स के थ्रू कि कौन है वो आपकी जिंदगी में जो आपकी अनकही बातों को पढ़ लेता है, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ लेता है, और कभी कभी फेस भी वो चीजें नहीं कहता है जो वो इंसान पढ़ लेता है। तो ऐसा कौन सा है इंसान आपकी जिंदगी में, बस वही, उसके बारे में आज आपको हमें बताना है। और बताना कहाँ है, बताना है हमें हमारी मेल आईडी पर। और हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnow@gmail.com। तो आप हमें मेल्स भेजिए और हम भेज रहे हैं एक बेहतरीन सा ट्रैक आप तक।

जी, 1:23 का वक्त और शिखा है आपके साथ प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। और आज हमने एक आपसे सवाल किया है, एक विषय आपको दिया है, और वो विषय ये है कि भाई हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है कि आपकी अनकही बातों को भी वो पढ़ ले, वो सुन ले आपकी अनकही बातें जो आपने उससे कही नहीं है, और आपकी विश को वो एक चुटकी बजाते ही पूरी कर दे। तो ऐसा कौन है, बस आपको ये हमें बताना है। तो हमारे पास मेल आ चुके हैं, हम पढ़ते हैं किसका मेल हमारे पास आया है। तो हमारे पास महेंद्र दीपन जी ने मेल कर दिया है हमें। आदरणीय आर्य शिखा मैम जी, सादर नमस्कार। मैं महेंद्र दीपन गांव रूड़ जिला नागौर राजस्थान से सुन रहा हूं। आज का आपका सवाल दिल को छू गया कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन है जो आपकी हर जरूरत और आपकी हर बात बिना बताए जान लेता है। तो मेरा जवाब है मेरे पापा। और इतना प्यारा सा इन्होंने जो मेल किया है ना, उसमें स्माइली बने हैं, फ्लावर्स बने हैं, हार्ट बने हैं। तो ये जो प्यार का एहसास है, ये इन्होंने मेल्स के थ्रू भेजा है अपने। पापा वो शख्स हैं जिन्हें हमारी खामोशी भी बहुत कुछ बता देती है। हम कुछ कहें या ना कहें, चेहरे को देख कर ही समझ जाते हैं कि मन में क्या चल रहा है। मेरी जरूरत बताने से पहले उसे वो समझ लेते हैं और मेरी परेशानी को बिना पूछे महसूस कर लेते हैं। यही तो पापा का प्यार है। पापा के लिए बस इतना कहना चाहूंगा, दुनिया में रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, लेकिन पापा जैसा समझने वाला कोई नहीं मिलता। जो हमारी अनकही बात भी पढ़ ले, वो सिर्फ पापा ही होते हैं। तो वाह, क्या बात आपने लिखी, और आपकी ये बात भी हमें छू गई, हमारे दिल को छू गई।

सुनील कुमार पाल जी ने हमें मेल कर दिया है। हेलो डियर आरजे, गुड आफ्टरनून, मैं मिश्रिक जिला सीतापुर से मेल कर रहा हूँ, उम्मीद है आप अच्छी होंगी। जी हाँ, हम बिल्कुल अच्छे हैं और हमारी आशा है कि हमारे लिसनर्स जितने हैं वो भी अच्छे होंगे। मेरी एक दोस्त है, हम दोनों ने पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में किया है, हालांकि वह अब मुझसे दूर हो गई है। जब भी हम दोनों को कोई उलझन होती है तुरंत ही उसको कॉल कर लेता हूँ। उससे बात करने के बाद ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। वाह, क्या बात आपने लिखी कि भाई दोस्त तो ऐसे ही होते हैं कि आपकी मन की बात को भी पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं तालिब अंसारी जी क्या लिखते हैं। तालिब अंसारी जी ने लिखा है, तालिब अंसारी राजा कटरा बाराबंकी से इन्होंने मेल किया है। इन्होंने लिखा है माई मॉम एंड डैड। तो इन्होंने कम शब्दों में बड़ी बात कह दी कि भाई माई मॉम एंड डैड, ये दो लोग ऐसे हैं इनकी जिंदगी में जो इनके दिल को पढ़ लेते हैं और ये बिना कि कुछ कहें या ना कहें लेकिन इनकी सारी बातों को वो समझ लेते हैं और इनकी इच्छाएं भी पूरी कर देते हैं। तो बस एक लाइन में, मतलब छोटा सा सेंटेंस लेकिन कितना कुछ कह गया। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतने अच्छे से सुनते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं, टाइम निकाल कर रिप्लाई करते हैं, तो इसके लिए दिल बहुत खुश होता है। तो हम आगे के मेल्स पढ़ेंगे, जी हाँ, लेकिन उससे पहले एक गाना आ रहा है आप तक, तो चलिए इन्जॉय करते हैं, फिर लौट कर आते हैं और पढ़ते हैं आपके मेल्स और जानते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है और कौन सा ऐसा शख्स है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी अनकही बातों को पढ़ लेता है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
4: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
3: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।

जी बजकर 40 मिनट का वक्त और ये वक्त कह रहा है कि भाई शिखा प्रोग्राम में अब मेल्स पढ़ने की बारी है, तो चलिए मेल्स पढ़ते हैं। किसका मेल आया है हमारे पास? हमारे पास मेल आ चुका है बाबू अंसारी जी ने हमें मेल किया है। गुड आफ्टरनून शिखा मैम जी, कैसी हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। टॉपिक पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना कहे कोई परेशानी समझने वाले हैं सिर्फ मेरे अब्बू, हर एक चीज नोटिस कर लेते हैं क्या है क्या नहीं और झट से उसका उपाय भी कर देते हैं। आई लव यू माई अब्बू। तो बहुत अच्छी बात आपने लिखी भाई, मम्मी पापा तो बिल्कुल कहते हैं ना एक जादुई चिराग टाइप का होते हैं हम लोग के लिए, कि उनसे कुछ भी आप कहें ना कहें वो बातें आपकी सारी समझ लेते हैं। मोहम्मद साबिर अंसारी जी ने हमें मेल किया है, चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं। साबिर अंसारी कानपुर से इन्होंने हमें मेल किया है। प्रोग्राम मस्त लग रहा है, ऐसे ऐसे गाने की मजा आ गया। अच्छा थैंक यू सो मच। और क्या लिखा है इन्होंने भाई, आपने इतनी तारीफें तो लिख दी हैं मोहम्मद साबिर अंसारी जी, लेकिन आज के टॉपिक से रिलेटेड आपने कुछ नहीं लिखा और हम सोच रहे थे कि आपने शायद कुछ टॉपिक से रिलेटेड लिखा हो, लेकिन आपने एफएम के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी, थैंक यू सो मच। और टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ लिखना चाहिए था। विजयपाल यादव जी ने हमें मेल कर दिया है। आदरणीय बहन जी और ललहुआ, इन्होंने ललहुआ खीरी से इन्होंने हमें मेल किया है। आदरणीय बहन जी सादर नमस्ते। दीदी जी मम्मी पापा यह सच्चा दोस्त ही मन की बातों को जान सकता है, बाकी लोग जानकर हंसेंगे लेकिन समस्या का समाधान वो अपना होगा वही कर सकता है। प्रेषक विजयपाल यादव, ग्राम व पोस्ट ललहुआ, जिला खीरी। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें अपनी व्यूज शेयर करें। अनिल कुमार जी ने लिखा है, शिखा मैडम जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? 12 बजे से आपकी आवाज के साथ जुड़े हैं, शतरूपा शो बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। टॉपिक पे इन्होंने लिखा है, शिखा मैडम जी मेरी लाइफ में मेरी माँ है जो मेरी बातों को समझ जाती है, मैं किसी भी परेशानी में होता हूँ या कोई बात हो जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, मेरी माँ उस बात को समझ लेती हैं और जो भी परेशानी हो मेरी दूर कर देती हैं। पता ग्राम गेंडाखाली नंबर 1 टनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से इन्होंने हमें मेल किया है। अनिल कुमार जी थैंक यू सो मच। और इसके बाद हमारे पास मेल आया है मोहम्मद आसिफ जी का, तो भाई आसिफ जी का मेल हम पढ़ रहे हैं, पढ़ लेंगे फिर उसके बाद एक प्यारा सा गाना भेज देते हैं आप तक। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से इन्होंने हमें मेल किया है। शिखा मैम मेरी लाइफ में मैं खुद ही अपनी सारी विश पूरी कर लेता हूँ, तो इससे अच्छी तो मुझे लगता है कोई बात ही नहीं है। कि कहते हैं ना कि सबसे पहले हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे तभी हम दूसरों की नीड को पूरा कर पाएंगे, दूसरों की विशेस को फुलफिल कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपने लिखी मोहम्मद आसिफ जी, और ये जो आपने लिखा है ना ये दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन होगा कि जो लोग अपनी बारे में नहीं सोचते, जो अपनी चीजों को थोड़ा लाइटली लेते हैं, तो वो आज से अपनी चीजों को थोड़ा सा ध्यान देने लगेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें मेल किया। अभी मेल्स हमारे पास बहुत ढेर सारी हैं, हम मेल्स पढ़ेंगे आपके, लेकिन इस गाने के बाद।

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 सितंबर महीने की 8वीं तारीख, दिन है मंगलवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्रीमती सांगे चोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री लाम सिरिंग, श्री तानिंग ताको और श्री हेमंता स्वर्गिरी, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री अमल कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री लोपसांग तोपदेन तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मीरी मिर्ग मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए AI सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। GFF वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। GFF 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। GFF में इस वर्ष एजेंटिक AI, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश

0: इश्क को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर एआईआर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
2: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
3: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हुई शोर शराबे के ऊपर। उसके बाद वो कहासुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।

0: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
2: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे खिनमय मठ तवांग के लामा तेंदन गेलसन और साथी भिक्षुगणों से बौद्ध भक्ति भजन। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत खिन्ने मठ तवांग के लामा तेंजिन ग्येलसन और साथी भिक्षुगणों से बौद्ध भक्ति भजन आकाशवाणी के तवांग केंद्र से।
1: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes

Sabar,

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे किनमे मठ तवांग के लामा तेंजिन ग्यालसन और साथी भिक्षुगणों से बौद्ध भक्ति भजन। इसके साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। चलिए अब सुनते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे जुबीन गर्ग और नीलिमा खातून के आवाजों में चंद आधुनिक आसामिया नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं भी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत जुबिनगर और नीलिमा खातून से चंद आधुनिक आसामिया नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: जुबिनगर और नीलिमान खातून के इन्हीं आधुनिक असमिया नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी दिकी लामू से जलवायु परिवर्तन का प्रकृति एवं समुदाय पर प्रभाव विषय पर एक वार्ता।
1: ताशिदिले आप सभी को मैं डेकिल हमू पीएम श्री कक्षा 11वीं विज्ञान की आकाशवाणी तवांग से प्रसारित मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय समुदायों पर प्रभाव। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ वह केवल पर्यावरण से जुड़ा विषय नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व, संस्कृति और भविष्य से जुड़ा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय समुदायों पर प्रभाव। साथियों, जलवायु परिवर्तन आज किसी रिपोर्ट या सम्मेलन की बात नहीं रह गई है। यह परिवर्तन हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि गर्मियां पहले से अधिक बढ़ने लगी है, सर्दियों में बर्फबारी अनियमित हो गई है, बारिश कभी बहुत अधिक हो तो कभी बिल्कुल नहीं।

0: होती है या सभी परिवर्तन मानव गतिविधियों का परिणाम है। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर जीवन रेखा होती है, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण ये तेजी से पिघल रहे हैं। इससे स्रोत सूख रहे हैं, भविष्य में जल संकट बढ़ रहा है। पहाड़ों में अब ना तो बारिश समय पर होती है और ना ही बर्फबारी पेरी जैसी रही है। साथियों, अब मैं जलवायु परिवर्तन हमारे मोनपा जनजाति को कैसे प्रभावित कर रही है के विषय पर बोलना चाहूंगी। मोनपा समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीते आए हैं। हमारी संस्कृति, कृषि, पशुपालन और जीवन शैली पूरी तरह से पहाड़, मौसम और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, लेकिन आज बर्फबारी का समय बदल रहा है। जल स्रोत धीरे धीरे सूख रहे हैं, पशुपालन की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। इसके बावजूद मोनपा जनजाति की पारंपरिक ज्ञान, प्रकृति संसाधनों की रक्षा, सामुदायिक जीवन और सदा जीवन आज पूरी दुनिया के लिए एक सीख है। यदि हम उनके अनुभव और प्रकृति सम्मत जीवन शैली से सीख लें तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ के मौसम पर निर्भर रहती है मोनपा समुदायों की पारंपरिक खेती, लेकिन अब फसल बोने का समय बदल गया है। पाला और असमय बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। चारागाह क्षेत्रों में कमी आ रही है। जब जीवन कठिन हो जाता है तो युवा रोजगार की सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। इससे गांवों की जनसंख्या घटती है, पारंपरिक ज्ञान संस्कृति कमजोर होती है। समाधान सरकार या संस्थाओं तक सीमित नहीं है, हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। पेड़ लगाना और बचाना, जल स्रोतों की रक्षा करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना आदि। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, यदि तवंग के पहाड़ सुरक्षित है तो नीचे बहने वाली नदियां सुरक्षित है। यदि मोनपा संस्कृति सुरक्षित है तो प्रकृति का संतुलन सुरक्षित है। आइए हम सब मिलकर संकल्प ले कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सिर्फ बातें नहीं, जिम्मेदारियां निभाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी देकी लामू सिंह जलवायु परिवर्तन का प्रकृति एवं समुदायों पर प्रभाव विषय पर एक वार्ता।
2: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है बिल्लू फिल्म से सोहम चक्रवर्ती, आकृति कक्कर और मोनाली ठाकुर के आवाजों में, बोल गुलजार के और संगीत प्रीतम का।

अगला नगमा सुनिए मोहम्मद रफी के आवाज में। कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत को लिखा है SH बिहारी ने और संगीत से सवारा है OP नैयर ने।

श्रोता नारी संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए, ऊंचाई फिल्म से अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

0: ऊंचाई फिल्म की इस गीत के साथ ही महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत अब समाप्त होता है।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। चलिए अब आनंद लेते हैं फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी का।

गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए बवाल फिल्म से लक्ष्य कपूर, आकाशदीप सेन गुप्ता और सुवर्णा तिवारी के आवाजों में। गीतकार कौसर मुनीर और संगीत आकाशदीप सेन गुप्ता का।

श्रीकांत फिल्म से पेश है अगला नगमा जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाजों में। तनिष्क बख्शी द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है श्लोक लाल ने।

अगला नगमा सुनिए अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में। हसीन दिलरुबा फिल्म की इस गीत को लिखा है किस्तीज पतवर्धन ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

0: फाइटर फिल्म से भी आप सुन रहे थे कुमार का लिखा नगमा, स्वर बी प्राग विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी के तथा संगीत विशाल शेखर का। श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नवगीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: कार्यक्रम का अगला नगमा पेश है योद्धा फिल्म से विशाल मिश्रा के आवाज में, बोल कौशल किशोर के तथा संगीतकार विशाल मिश्रा।

मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से सुनिए अगला नगमा जुबिन नौटियाल और साथियों की आवाजों में। गीतकार कौसर मुनीर और संगीत तनिष्क बख्ती का।

रितो रिवा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे रुस्लान फिल्म का नगमा, बोल राणा सोतल के और संगीतकार रजत नागपाल। श्रोताओं, अगला नगमा पेश है लापता लेडीज फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। प्रशांत पांडे के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राम संपत ने।

दो पति फिल्म से सुनिए अगला नगमा परंपरा टंडन की आवाज में। गीतकार कौशल मुनीर तथा संगीत दिया है साचेत परंपरा ने।

0: अमर प्रेम की प्रेम कहानी फिल्म सभी आप सुन रहे थे। गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा अरिजीत सिंह की आवाज में, बोल कुणाल वर्मा के और संगीत प्रसाद शास्त्री का। इसके साथ ही श्रोताओं, फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है।
1: अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया की स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स ओटीटी पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:31 हुए हैं। श्रोताओं, सुनिए शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथियों से शहनाई वादन। राग है मारू बिहाग।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे मारू बिहाग राग पर उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथियों से शहनाई वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

यह आकाशवाणी है, अभी आप मीनाक्षी मजुमदार से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हाजरिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में 35,000 करोड़ की विकास परियोजना का शुभारंभ किया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 8वें कार्यकाल के 7वें विशेष सत्र के पहले दिन 3 अहम विधायी उपाय पारित किए गए। श्रीलंका के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, साक्षरता ज्ञान अवसर और बेहतर भविष्य का रास्ता खोलती है। रक्षा परिषद ने 1.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई विकास परियोजना का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 अहम हिस्सों को देश को समर्पित किया, जिससे फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क का काम पूरा हो गया और यह चालू हो गया। पीएम मोदी ने न्यू सानंद, न्यू मगरपुरा, न्यू अमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने टंडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई पैसेंजर ट्रेन सेवा भी शुरू की, जिससे अलीराजपुर के दूर दराज आदिवासी इलाके नेशनल रेल नेटवर्क से जुड़ गए। भारी भीड़ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा है और अब अपनी खुद की एडवांस ट्रेन और मेट्रो कोच बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने 2,800 किलोमीटर से ज्यादा लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के काम को पूरा होने को 21वीं सदी के भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि और देश की बदलती कार्य संस्कृति का भी सबूत बताया। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली सालाना फिनटेक सम्मेलनों में से एक है। 4 दिन तक चलने वाला यह फेस्ट 11 सितंबर को खत्म होगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज मुंबई में शुरू हो रहा है। 2020 से GFFA

एक इंटरनेशनल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है, जो पॉलिसी बनाने वाले रेगुलेटर, सेंट्रल बैंकों, फाइनेंशियल संस्थानों, फिनटेक कंपनियों, टेक्नोलॉजी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और दूसरे ग्लोबल स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाता है, ताकि वे फाइनेंस के भविष्य को आकार देने पर चर्चा कर सके। GFA 2026 की थीम है पोटेंशियल टू इंपैक्ट एजेंटिक AI। क्वांटम समावेशी फाइनेंस के लिए भरोसेमंद कनेक्टेड ग्लोबल सिस्टम। इस साल चर्चा इस बात पर केंद्रित होगी कि कैसे एजेंटिक AI, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और दूसरी अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी दुनिया भर के नागरिकों, कंपनियों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए भरोसेमंद, समावेशी और मापने योग्य नतीजे दे सकते हैं। आज अरुणाचल प्रदेश के आठवें विधानसभा का विषय सातवां सत्र आयोजित किया गया। सत्र की शुरुआत करते हुए पूर्व विधायक कालिंग तगू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि माफ कीजिएगा तालोंग तगू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद शून्यकाल चलाया गया। विधानसभा के विशेष सत्र में आज MSME फेलिसिटेशन स्टेबलिटमेंट एंड ऑपरेशन बिल 2026 द अरुणाचल प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2026, द अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2026 सर्वसम्मति से पारित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के आठवें विधानसभा के विशेष सातवें सत्र के तहत कल भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण सदन को संबोधित करेंगे। सरकार ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में ITI क्लस्टर के लिए कुल 435 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान को मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान के लिए 241 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के लिए 240 करोड़ रुपए से ज्यादा और तेलंगाना के लिए 254 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान शामिल है। इसे प्राइम मिनिस्टर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI की पांचवी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में मंजूरी दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा की मांग करने वाली एक PIL पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि क्या अंतरिम तौर पर ऐसा कोई निर्देश दिया जा सकता है कि, और कहा कि याचिका को कल ऑटोलिस्टिक के लिए दायर किया जाना चाहिए। यह याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में PG बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद दायर की गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अंतरिम चरण में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे इस मुद्दे पर कल ही एक और PIL पर सुनवाई हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आज मशहूर गायक और असम विधानसभा के पूर्व सदस्य भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हाजुरिका को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर हाजुरिका की आवाज ने असम की आत्मा और पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अपने दिल को छू लेने वाले संगीत और दमदार शब्दों के जरिए डॉक्टर हाजुरिका ने असम, पूर्वोत्तर और व्यापक मानवीय अनुभव की भावना को बेखूबी से पेश किया। BJP ने आपकी पंजाब सरकार पर राज्य में ड्रग्स की समस्या को नियंत्रित करने और खत्म करने के लिए ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की देखरेख में ड्रग्स का नेटवर्क फल फूल रहा है, फिर भी इसे और ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। ये दिन हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि लोगों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व की याद दिलाई जा सके। इस साल

0: अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है लोगो, धरती और समृद्धि के लिए साक्षरता। 1966 में यूनेस्को के आम सम्मेलन के 14वें सत्र के दौरान घोषित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रगति की समीक्षा करने, लगातार बनी हुई और नई चुनौतियों के बारे में समक्ष गहरी करने और तेजी से बदलती दुनिया में भविष्य के साक्षरता एजेंडे को आकार देने का मौका देता है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया। IMD ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गंगा और के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुंडिचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्व भारत के बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान आने की उम्मीद है। आज अहमदाबाद में 2026 वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज के तीसरे चरण में भारत ने तीरंदाजी में 2 गोल्ड मेडल जीते। हरविंदर सिंह और विजय सूरी ने पैरा एकल पुरुष डबल्स फाइनल्स में और 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज का खिताब जीता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Prem Sharma. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara in Gujarat. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the full completion and operationalization of the Freight Corridor network. PM Modi also flagged off freight train services from New Sanand, New Makarpura and New Umbergaon and New JNPT, along with the new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail grid. Addressing the huge gathering, the Prime Minister emphasized that India has emerged as a global manufacturing hub, now producing its own advanced train and metro coaches. In Mumbai, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Global FinTech Fest 2026, one of the world's largest and most influential annual FinTech conferences. The four-day fest will conclude on 11th September. The seventh edition of the Global FinTech Fest is beginning in Mumbai today. Since 2020, the GFF has emerged as an international thought leadership platform, bringing together policymakers, regulators, central banks, financial institutions, fintechs, technology companies, investors, academia, and other global stakeholders to deliberate on shaping the future of finance. The theme of GFF 2026 is Potential to Impact, Agentic AI, Tokenization, Quantum, Trusted Connected, Global Systems for Inclusive Finance. This year, discussions will focus on how agentic AI, programmable finance, quantum technologies and other critical and emerging technologies can create trusted, inclusive and measurable outcomes for citizens, enterprises and economies globally. The government has approved strategic investment plans with an aggregate project outlay of over 735 crore rupees for ITI clusters in Rajasthan, Uttar Pradesh and Telangana. It includes 241 crore rupees investment plan for Rajasthan, over 2440 crore rupees for Uttar Pradesh and 254 crore rupees investment plan for Telangana. It was approved during the 5th National Steering Committee meeting of the Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs. The Delhi High Court today refused to grant an urgent hearing on a PIL seeking hostel facilities in all colleges under Delhi University. The court asked whether such a direction could be issued in the interim and said the petition should be filed for auto listing tomorrow. The plea was mentioned following the PG building collapse in Satya Niketan near Delhi University's South Campus, which killed 7 people. The bench headed by

0: pechuk tapo pangchin United ni team ni apul total team kiet koto ti number.
1: Les tournament tarik chik thor go tu yeta shukta dendur thama chik kishen yuki nam isi kuch kikrang meche ta match bina go go to dishin yuki nam.
0: Ta uzo tournament atang tarik chik thor go tu yet ngari closing chit menda tarik khalu duhu go to tika tati chopshin yuno ta ot puchi kade nam le mele rane deka ngashi kyang go so ning zi mena reishin tere tati chopshin zi tarik khalu duhu go to jika ngu final new city di nyung yuno oja ba ta uzo match chit ta atang ka league match pe team gamp खपते गांव टिप का शन मोसो इंबोर हो जा प्ले चिक फाइनल तक जे मैच खली चिम नहीं गोतो दी नी हो जो को प्लांग थी का ता मैच नहीं नहीं गोतो दी नंबर नाले तो जे ची दिख थोर मैच थी को नो जो संजुक तो जे नहीं थोर मैच थी अपने जो प्लांग थी का मैच नहीं नहीं गोतो दी को जे पुच्चे गोतो दी प्लांग नहीं गोतो दी गारी गेप न्यू नो जाऊंगी ना टीम नंग नाम ना दे दुयुन मैच इन तेरी ने दे बिरे ना न्याजा तो निंग नेट कटला जिमिना रज नी नो पुच्चे चिक गेपिंग गोतो दी प्लांग नहीं गोतो दी न्यू नो
1: ला Nada dendu na tarik chik thor gotu de yin ta na de zere baj kae gani
0: na tik ta atang ka mena pon ga ta ta to tong ga kimur west coming kimur mena bir dc nang imur ju ga dang mla nang im kaam shi de dang ari invitation de phu no shin de ta mena bir mla sar pa nak thi zin yin ne ta mena state ka ta assembly de chala ge du ni ya chik bir wa nak chi ta shoti phe me tong ni mo tong ya ta confirmation de mona shin de ta atang ko to sabone nga district administration dc madam benang imbur ji jpc sar imbur jpm nang imbur mami pon imbur atang go tup hod imbur kaapshi da tngari invitation ni phuno ta otnya je ngol rebu ga chimena biru thanye nang ga podi atang ves coming year ngoi imbur chu atang ta one pon ga lanye nang imbur chu ga podi phipik chapshi nyugunu
1: les zerim da suse gochik thol go so yikina
0: पन्नल हन्य नंग बात चित कहाँ पोता को तो दी सुधे लेरांग की भिषा चाहिए को तो दियो मो फेपिया जुक अतं चीप केस चित तत तंची उमुनु मुर्दा दे नोप चले तकले चीप केस चित सुई नम अतं का सेम सा पिनाई उसुंग या चिक अतं सो चीप केसी ताते फेपिंग बुर और चित सुधे ग्रो इकार में चिलंग लुगा फेप और जुक सुधे ग्रो थो को तो दी का अतं ता मोको लेरिम बात चित को तो इति नो और त्यां चे को तो दी का ता समय इंबुर जाबरो इंबुर और जुक इका फिटका के ताते में नाजो अतं का ता अनाचल ने किन्ने चे गिल्ट्री क्रीम ने बिर पोप बैंड नी नोम्बुर ओतनाय गापो अतंग देनि जुसु नोम्बुर ओजुक मेनुक अतंग ओजुक तोंगकु शोप संदुप्ला पिनंग द अनचल आइडल सीजन 7 को विनर इंबुर बिगो तो थी अमो परफॉर्म बिया इंबुर ओजुक अतंग ओजुक मेनुक मेगा डांस का छक अतंग ओजुक लुप्टु पुपुतु बुर मेन नंग ये ओमो छम फुई या छक त ओपनिंग जित त ये बिगो तो थी दंगारी तनु नोइन
1: लेस इचिक तंग यो टेस्ट नो ब्लाश जेना एंट्री फी तो नतंग ता निनिंग ये गतो फर्स्ट एडिशन का ये गता एदा एंट्री फी थी ता स्टेडियम ने गतो तन मो फेक नंग ने अध्यक्ष हो थे मेन टिकट सिस्टम ने ओरे इजे बोता ता निंग एड नोक्शन जदा टिकट सिस्टम ने ता को से चिरा मेन एदा गाय का थैंक यू नोला
2: ओला सोला ता टिकट सिस्टम जे कोर दे शतो इन दा गतंग मिनंग दे गतंग मि भक्ति हाओ सुरो मन ने ओरे ता भक्ति से न्योकले दा उशुंग स्टेडियम इम शुंग किम इजे फ्री गा गोसुम टिकट सिस्टम दे यार उत्कैला ने चोकन ने यरो रो इजे मेनु स्पोंसर या कन योर दिनुम उदना दे फ्री या गोसुम ने भक्तिस दे जोर मे सर सिंदर दा टिकट सिस्टम जो यक्तन शो गा शेर खेपसंग दे रेकनी गा शेर रूप योर दे ओइनो निंग रे या चने मेनु सर ओतो दा मे टिकट सिस्टम ने या ने दा फ्यूचर किले दा मिना शुंग सी ओमो स्टेडियम दिचे बिसुम जिंदा दा ओमने ओमो मेंटेनेंस या कोसो दि इंबुर ओमो मरे चोगुदर न्यू थी जकुला दा ओमो सीसीटी लेक यकुर में सर इताकुले दा इजे दाइक रिवेन्यू हलम दि ओने दा इच इट रूप चिकी हलम दि भेजे लया में तोने तमे जे दे सुगा उत्को तो टूर्नामेंट ला एमएसएल ला या सी टूर्नामेंट गा दा टूर्नामेंट एमएसएल जो सुगा फ्यूचर के लिए दादे ने सोचा है खोया दा मतलब स्पोंसर शेयर मोसो या टिकट सिस्टम जिकी थी रसो रही को इचिंग टिकट सिस्टम को तो दिया रूम इजिक दा ओतो सर सी दा रेट को तो दिंग सु ने दा ओपनिंग चिक सुम जे दा रूप क्या दे को तो दिम दा टिकट प्राइस चित इजिक दे शाम दिन जे दे लीग मैच का थोर दे रूप चुम उप चुगो तो रेम दे इजिक दे फाइनल जे दे रूप क्या दे को तो दे रेम
1: लसो ता ओतो दे सिटी गदन गन को नंग इन मॉर्निंग दे बुजु ब्रु तो ना दा ने दे इतना से गोते गप थी रवा वा इतना ब्रु बिल मोसो या देख सो नो वा गेनो
2: दा ओतो दा गदन जिसे गन को ना नि सीनियर सिटीजन नेर मे गदन ने दा ता बिर गो तो ना ने ने दे मिना बिर से फिरी गो तो दे इमबुर एजिक दमे जे दा गो ओनु ब्रु दा निंग दु मुय का नो उम तला नो ने ने दे बिर से गो तो दे फिरी इम
1: एजिक दा ओरिजिन दो जिला गा ता ओतो टीम का ता प्लेयर फिसो क मा ता दा इंजि गा इन हायर प्लेयर ये मोर
0: हायर ग्रो

0: छौ नम्बर अच्छा लेंगा कत ग्राउंड गाय सैमछ नम्बर अचुक रूल चिता हल्ले सत्तर नम्बर अचो कन्स्टिट्युएंसी वाइज जाऊे तौंग पुत गई लुमला सेंटी ना भी हायर गो तो गई अचुक लुमला खेर रहा है दे भी हायर गो तो गई अच्छा लोकल प्लेयर लुमला पेना टीम दिशोनी पेना टीम ने बुजुवाचे ये गाँव लोकल बात कहाँ पर पेना मकर सुबर होने चाहता है हायर मीन दे फिट कप मीन मिक्रो होते थे सही छो नंबर मी लेंगे वो तो दे सैम छो नंबर मौजूद ग्राउंड ने मिक्रो होते थे आता लोकल प्लेयर रंगो सुबर
1: टीम
0: लोकल इन पी आर सी एस टी जीरो नंबर हजू दिन क्या बुझे प्रूफ ओचित मिना अचो सेंटी ने भी हायर लगो तो गई अच्छा लोकल मतलब प्योर मिना बिना चंग चंग क्या कन्सुनसी किसु नि जो बे एच एस टी होल्डर नि पी आर सी होल्डर गो तो कसो नंबर सर
1: इंडिपेंडेंस कप का स्टेडियम
0: मैं ओत को तो नोम सर ओत को तो लेंग इंडिया ने काजी गोते ना कृत टीम थी का प्लेयर खाली नहीं गो तो रजिस्ट्रेशन याद खाली नहीं चे प्लेयर चिग्रो को तो आता लोकल प्लेयर रंग कोसंबर और प्लेयर ग्रो को तो जितना भी ना इन्हें हायर या जो लंबू काजी को तीन ना इंडिया ने ना काजी को तीन ना अच्छा हो नंबर
1: लेसो तरंग टीम ने टीम मैनेजर ने स्पॉन्सर या मेरा ये थे का ने प्रिया पीपी रोते हुए ने रंग रोज जो में
0: फिफ्टीन अगस्त नि प्लिक इमोशन अचो नंबर से धाली मांगश नोम फिफ्टीन अगस्त का इन ब्ली होता है सूम सैन छोदी अचो ग्रो होता है लेंगे सैन छो नोम
1: खटंग
0: नहीं मांगश
1: इंडिपेंडेंस कप चेगा टीम चिबली ने मैं टीम चिबली ने सुखता था फिर टीम नहीं फाइनल गाँव में हम यहाँ को विनर चित आ रही टीम रहा मैं दुखे डिस्ट्रिक्ट टीम ब्ली मनु मैं इंडिपेंडेंस कप का कहना दुखे टीम ब्ली नु फिर रन दुखे चित सेंगन बट सिट डू जीरा मेरे कया मार लुमला क्वेश्चन से का टीम चिली मन इसी को थोड़े लोग का टीम चिली मन और इसी अथो तवंग क्वेश्चन से का टीम नहीं निभे इजा को रन चिको सेंगन बाजी थी टीम क्वालिटी से डक्सो रखो समय तो चेक जो रे टूर्नामेंट आते ना क्यों मैच खाली चिंग में अथो देता सेनी क्यूमपुर ये नंग इजा को बीर वेस्ट कमिंग का गेयर प्लेयर माफ थी फे क्यूमपुर नो सूमे गोसुमपुर इतना या बोल इतना डेडी कह नौ नौ
0: अरे ना था फर्स्ट एडिशन का गोटो देगा मैं बीर फिटका टीम फिप करना से अरे तो होटल नि जो मुझे कमिटी थोक थी बिजुमर सिंह दुखे गोटो थी मैं फिटका टीम फिप करना इन्ना अच्छा आता टीम का बिना फिटका प्लेयर हायर या करना कहाँ पता सूमे नि जमे कहाँ पता पेतंग सोचरांग थी टीम ओनर चिन्ह मैनेज आको समर तो वो चेको थी मैं फिर टीम फिटका फिप करना से मैं एक खेम जूमे छई भी लोंग इमर हजिक दादो थी होटल बाजी मजे तो मैं टूरिस्ट मुनु ले तीन या तो नंबर होगा गई मैं होटल मालिक ना से गई गारी रिक्वेस्ट आया चिक इका गोंग न्यूशो थी चाया बिरीक थी गारी मैं कमिटी थोक लारो या तुम सिंधे दिन हजे जूमे नि जमे बाजे कहाँ पोजेदा बेटा टीम सोसरा थी या कौन टीम मजे टोप थी मैं डांका तिरंग टीम ना होंग सरम सैन टीम बाजी तेज को जोड़
1: दाइनो टी डी एस ए का चेयरमैन इम्बुल तंग तंग स्टेडियम तेरगोसो हायर टीचर स्टेडियम दशम नाम चेन्नई ना मंगा टर्फ तीनो नंबर यूंकी थीं दशम नाम तुम्बे दशम तुम्बे खेने लगातार शू मेरे सिंधा टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सुरु तुम नई लिमा इम्बुल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सुर टर्फ थीं मैच सुर दशम दिवो चेन्नई नंबर सिंधे दुनू दादा इंडिपेंडेंस कप फाइनल चेतना पंद्रह तौटा माफ्ट जो बोले दुनू ये सीटिंग कैपासीटी न्यूम रातोला इचिकसुम गया मीट तौटा माफ्टी हो जो बोले बाजी मिना स्टेडियम थे कोरा जुने में बाजी चिता यंग जुने इजा बोलता दुनू चिक सीटिंग कैपासीटी मी मंगशो जुमे तो चीति थोपी यामे तो नेबो चिंगा चोजिन चौब चीति चिकेपन जिला इम्बुर तबिना चीफ पेटर्न इम्बुर स्टेट कप फुटबॉल एसोसिएशन कप प्रेसिडेंट ये बिना इम्बुर चीफ पेटर्न ये बिना इम्बुर चु टोसोंग थोगा इना थोजिन सिख थोगा इना चिकेपन जिला शरीर मुनुम्बुर या बोता उच सीटी स्टेडियम चित जुमे कैपासीटी चित सुनु मंगशो ताउ चीते यू दुनू मी मंगशो जुमे तो नि इजिको दी कंग जिथे दो नाम छो लंगे ऑडियंस बाजे नाम से कंगे निभा इजा बोता इजिको इम्बोर निंग संगो इम्बोर इजिक ताओ सुमे तो सिटी के

0: 다슈다 덴더 테겐 지시야다 프라이스 머니 고노 남다 티티 나이 마나로
1: 다 어조 퍼스트 에디션 오브 루킹야야 지 테겐 지체 붐 그로 닝어조 아탄 트로피 어따 트로피 지 러닝 트로피 임부 어조 세컨 옹만 지체 붐숨 모터디 어조고 어조다 베스트 플레이어 지체 주 플레이어 투 토너먼트 젠나 피티 슈스고 어조 바나 바빠디 넘버 어조고 베스트 골키퍼 임부 하이스트 스코러 임부 어조 페어 플레이 인 어 디시플린 팀 니도 모 어따 갑시 똥똥 읍증 읍증 거더디 디 넘버 어조고 매치 티디가 갑시 즉 히로 ऑफ द मैच ये था मैंने इंजिगा शुदुने मैन ऑफ द मैच यो तो था आप दिया जो मैच थी दिशिन प्लेयर जो डॉक्टर शनगंज से बिना से ट्रॉफी खम या जो और
0: टीम गेट द पूल ची या पूल का या यो मनोवा
1: मिन दो तो पूल जिस मुनुम सर तो लीग पे च कहां पर टीम गेट का पितंग कहां पर दूसरे थोंग ये आपको संबोल टीम जी जिस मैच निसनिस को तो दे और जो शन को सुनम दो तो पूल डिवाइड यानी वो जिगर मुनुम वो तक दिपका पे तंग लीग का पे च कहां पर थी थी से दूसरे थोंग ये कहां से आपको
0: सुनता सुनता नहीं पैनल का
1: नहीं वो तो
0: पूल ए बी सी डी ये मुनुम
1: वो तक मुनुम दो तो कहां पे पेशन या जो पॉइंट मांगदा सुशी दत्ति नेक्सम और टीम ब्लिग तो दी ना युगा थोड़ी मुर्प नंबर वन का सो टू का सो थ्री का सो या ता अतं उम्मा दी शुद्ध ने ता आईपीएल फॉर्मेट को तो जी नंबर
0: नेसा
1: और को तो दिया या तब ना छोटी से हाँ बोयी मिशन दे रहा छोटी हम बोयी मिशन और तो तक कहाँ पो पॉइंट वाइस या या ची लीग मैच का पॉइंट टक्ता सो जानते मौत ची टक्ता को तो दिया बिना दा फाइनल गई चांस मांगना को तो दिया बिना जी जानते
0: लेस एमएसएल दाने ले चुंगी पी इंबुर ताऊ चो चिक ते मेन का बेस कमी ना गारी होस्टेज ने ते यक्षो नो मनो
1: ओचो द एमएसएल चो दमना गतांग क टीडीएस सोयि मिनम द टीडीएस छोकपक दमना टीडीएस न्यो स्पोर्ट्स क रिलेटेड नो बे द बैक इवेंट को तो दिमुर ओ जपले द ओच न अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन दिप का एमओयू दि साइन या नंबर तो ग्रो को तो दि ओ जपले द ओचो बिरी गारी ऑर्गेनाइज या कि या दमना बेतांग टूर्नामेंट या छो नेक दि छिन दे छन दमना एमएसएल मेगा त द फिट क मिसी गारी ऑर्गेनाइज
0: या
1: छो नंबर ओ जक दमना गोर को चो छपसिदा द शुगा को तो दिगा कृति निंदा द
0: तो चिक त रेफ्रेन उत नाय आमेना दा शमदा का इंडिपेंडेंस कप का मिना रेफ्रेन आ मागेरोंग ते शमनो नाम दा ने इत नो तो दा लुक्से रेफ्री एपिसोड ने ता
1: इम इम सर दा दंगे नाची यूसुफ लि गंच तो ओचो एमएसएल तो चिक अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन दिप कांगर एमओयू दी यानु नंबर होर ले तिन या चिक ता ओजुगो मैच का रिपोर्ट पाजी कहां पो देंगा अरुणाचल हेड ऑफिस का फुई गो दुंबर चिक अमा केर मिना रेफ्रीनिंग ओता जी कहां पो देदा अतामी रूपचित बिशेती या कोसम चिंदर लाचे जी को तो देती या कोसम चिंदर था अमा कर गांव पर रेफरी ने वो बात कहाँ ऑफिशियल बात कहाँ पता अमा क्या थोंग नंबर
0: लेस लेस इसी तरह तो टीम थ्री का एंट्री फी को कॉल होंगे
1: क्लब रजिस्ट्रेशन फी टोंग डांग उपचुको तो थी और जो इंट्री फी टोंग डांग उपचुको तो थी क्लब सर्पर इन्हें रजिस्टर यक्ति ने और बूम दी को तो नित्तम और जब लेता क्लब ना ने रजिस्टर यार न्यू ने इंट्री फी जित्ता टोंग डांग उपचुको तो थी इमर्स फ्रेंचाइजी फी जित्ता टोंग डांग उपचु कोतो थी लॉन्ग नंबर नपचे को तो थी टीम ग्रो नंबर दुखचे को तो थी टीम नई को तो थी सर्प नंबर थी इन थिर्जनो बुरा गांव दुखचे पे सर्प को तो थी इमर और जो को थी बोमडला टीम सर्प को तो दिन मुर्ता बिन्ने को तो जित फ्रेंचाइजी सर्प लोगों से मौज अपने तो बिन्ने को तो दी इंट्री फी ये ना फ्रेंचाइजी फी ये ना बूम जी दी को तो दी बिगो से मौज शानु दा ना ने टीम नेकन बाजे ता इंट्री फी को तो जितना रंग उपचुंग उपचुंग तो दी
0: लेसो लेसो ता दूसरे चिन्नी ता देश मो तो तमंग लूटन लेकों लेरी मा टीडीएसए का चेयरमैन निंग एमएसएल सेकंड एडिशन का चेयरमैन लंगे ने पेप नंबी एजिकता ना तो थोड़को सो तो सेकंड एडिशन एमएसएल का नेसो जेगा लंगे ने सुनंग ता ना तो थोड़को सो या था उल्ले को तरिक खले तो उस अच्छे जो टेंडर प्लान माउंट सेंज यू किंबो टेंडर क्यों दम खले चिंगने को तो देगा तो सो सेंज यू किंबो जो तो तंग तो जैसे अंगन टीम जे जो वेस्ट कमिंग का ब्लीनिंग आता तवंग ब्ली या कोई क्यों दम गेट नो ये नंग टेंडर थम ची थी ता तेरे खले तो उसे इंबो इत मेनो ग्रां था मेना लीग मैच का या मेना टेंडर तन मोते फिफ सम ने चु मेना दा तो जे टिकट सिस्टम को तो दे नो ये नंग दुर इजा पोता दे कन को तो मेना दे मेना कने ने ते टिकट छत मो सो ये ने आ देख छो नो ये जे ते बुजु प्रो निंग दु मंदो ने ने ते बिना देख छो नो ये इजे जन बा जे न दे टिकट छ जने गा दे चु मैच मेना लले या प्लांग दे गा मैच नहीं दिबे तो नो नो रे छी नहीं दि सम ना चु मेना टिकट थी से ग्रो नो बु इजा पोता दे छी ओ जा लंगे ने सी एमएसएल सेकंड एडिशन का नेसे बजट सेगा ओसम ऑफ नोटिंग टू ये नंग बी इदा लंगे ने गा छी
2: तवंग जेवचांग जेचो हाई अल्टिट्यूड स्टेडियम

मेरे देश की धरती समय तो एम्बर लेरिम पुरानी हिंदी फिल्म गीत नौ नब चीज गिचे संगे न से नोस लेरिमा संगे एदम बने से वसीब ये थूते नंगो हिंदी फिल्म समय ने पुखाशे समय तो एम्बर चीज गीत ने गम खली चीचे आकाशवाणी इटन नक्र ले शिशो थे गीत मक अरुणाचल नदे डे चोक चोको निन निपक चेचे बिया नंगो दी समय तो एम्बर नौ नब चीज दूचे आकाशवाणी दिल्ली के रिले शिशु इंचिक सिंगर छुजे दो ने कम चिलिंग जे लुंगचिन का तवंग नांगतुक रेरे मा क्यों चिन नवबनं हिंदी का शिशु समय तो एम्बर संयन नौ नब छुजे दो ने कम चिगर जे लुंगचिन का तवंग नवर लेरिम बना छजन दुइ एम्बर संयन से दाता लेरिम से रका ना देश नब तुक लेरिम दे ट्रेनिंग छुजे को शिशु ने छुजे लुंगचिन का तवंग नवर लेरिम ने छुजे को शिशु सना एम्बर संयन उत्तम जे देशुक लेरिम से रचित दुस संयन दशुक लेरिम जरोखा हिंदी का शिशु सनंसा

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं व प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आज आप सुनेंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो चलिए श्रोताओं, पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर कार्यक्रम शेदोन लेरिम में सुनिए पूजनीय प्रोफेसर जामदोंग रिमुचे जी से 6 सत्रीय गुरु योग शास्त्र का प्रवचन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए इलाइट इंग्लिश स्कूल तवांग के 8वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी थ्रिंग चौटन से एक हिंदी कविता। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं आनंद लीजिए दिल का रिश्ता फिल्म के चंद नगमे आज 7:11 पर। साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग में सुनिए तवांग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री टाशी डोंडुप और मोन्यूल सुपर लीग सचिव श्री उर्गेन दोर्जी से 11वां याचो हाई अल्टीट्यूड स्टेडियम तवांग में आयोजित मोन्यूल सुपर लीग के दूसरे संस्करण का शुभारंभ के विषय पर हुई भेंट वार्ता 7:23 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमीय तराने के अंतर्गत सुनिए लता मंगेशकर से एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8:00 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम दिवस के विशेष सत्र की कार्यवाही की समीक्षा रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 9 सितंबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं।

रोजाने की तरह कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए जगजीत सिंह से चंद श्री राम भक्ति भजन कल दोपहर 2:30 पर। चंद आधुनिक आसामिया नगमों का आनंद लीजिए पापोन के आवाज में कल दोपहर 3 बजे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत।

चंद आधुनिक आसामिया नगमों का आनंद लीजिए पापोन के आवाज में कल दोपहर 3 बजे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात में सुनिए पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 9वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी पेमा छेकी नामो से डिजिटल विचलन और स्क्रीन टाइम कैसे कम करे विषय पर एक वार्ता। महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत में सुनिए आई हेट लव स्टोरी फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा, ऊंचाई फिल्म से नक्काश अजीज, सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान और ओम शांति ओम फिल्म से के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल दोपहर 3:33 पर। कल दोपहर 3:50 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में आनंद लीजिए स्त्री फिल्म से वरुण जैन, शिल्पा राव और सचिन जिगर, महाराज फिल्म से मोनाली ठाकुर, सूरमा फिल्म से दिलजीत दोसांझ, खेल खेल में फिल्म से विशाल मिश्रा और जारा खान, क्या यही प्यार है फिल्म से अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो, जीना सिर्फ मेरे लिए फिल्म से बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक, फिदा फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक, सायरा फिल्म से विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक और बागी 4 फिल्म से जॉश ब्रार और परंपरा टंडन के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम रागरंग में सुनिए पंडित विश्व मोहन भट्ट से मोहन वीणा वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मोनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम में सुनिए बोमडीला मठ के शिक्षक आचार्य पासंग सिरिंग से परम पूजनीय स्वर्गीय 13वीं सोनागोन्से रिम्पुचे जी की जीवनी एवं योगदान विषय का तीसरा भाग कल शाम 5 बजे 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:40 पर हमारे विशेष प्रसारण के अंतर्गत सुनिए माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन के ईटानगर आगमन पर रेडियो रिपोर्ट जिन्हें हम आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित करेंगे। लेरिम सेडा शाम 6 बजे 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति वंदना का कार्यक्रम जेदुन लेरिम में सुनिए पूजनीय प्रोफेसर जमदोंग रिम्पुचे जी से 6 सत्रीय गुरु योग शास्त्र का प्रवचन शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार शाम 7 बजे तथा अंग्रेजी में समाचार तथा हिंदी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर सुनिए हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए उपकार फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8 बजे व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिवस के विशेष सत्र की कार्यवाही की समीक्षा कल रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

Nyeba bu tiye, janjisime dunden yinan,

Samba Sambu Gune, Kansatilia, Nuvichet Junjuba Mayimba,

0: Lanyana sitata Kyabche kiawaan samdurima chesi tawang gompa chesho pepkan Jindu ne mimang lanyana shil Tunduk lami no jokuk Sungche na wosan na wambur Lanyana utamache deshnopduk Monpak lirimba na chachan didur Lungten kang tawa nabdu chuse nisong sasani Lanyana dushuk bulirim akashwani dilikere liya shusu Hindiga singyana chuse nisning karma lingache Inchiga singyur sanasa
1: Luta tene, nana indigiore, tete meva inam, tiji so, soan di vetsi, chuluka sum, tosun chuji di shetan di kanti jingmen, jamish ten jai zavati, shive, chuluka sum bati kapsu, shinye ten tsugi, loi rimba, lamji tsawa shinye ten bi tsui loi rimba, tsawa teba jambatan, chuluka nibe kapsu karin jisu chami kuba chibatan, chuluka sumbe kapsu, Juga tinjau lah suap datang, tinjau pengen tu mandi minyak lah suap. Sana sih tinjau jilam jilam, yang suap liar, syarikat jenjau aje. Di kampus suruh garis kampus suap tinjau, tinjau mandi nyam tu, sosin tu, dua jam ke kuli, yusinawan tu sijawa, jumpa ni, rantas sih tinjau lama itu suruh je, ni dia tinjau tak, lama jumpa je tinjau sil, lama jumpa nyam tu, nyam tu, yang suap jual cisun nyam be.
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है महाराष्ट्र के मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है
3: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर ए श्रेणी में कर दिया है प्रधानमंत्री इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं आइए सुनते हैं उनका संबोधन
3: भूमिका है इसी अनुभव से सीखते हुए हमें फिनटेक की ताकत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बढ़ाना है मैं आपको कैपिटल और क्रेडिट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं एक बहन है जो छोटी दुकान चलाती है उसको हर दिन डिजिटल पेमेंट मिलता है अब उसकी इनकम और खर्च में एक क्लियर पैटर्न दिखता है उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है तो उस लेवल से आगे बढ़ चुकी है जहां कम कैपिटल भी काफी था
2: इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है श्री मोदी ने कहा है कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्व

0: पूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एआई एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्म युगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. The theme of GFF 2026 is Potential to Impact Agentic AI, Tokenization, Quantum, Trusted Connected Global Systems for Inclusive Finance. Addressing the gathering, Mr. Modi said India is taking its FinTech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He congratulated all the guests and delegates who have come from India and abroad to the Global FinTech Fest. He said this is his 3rd consecutive year at the Global FinTech Fest and this hat-trick shows how important they are for a Viksit Bharat. We now go over live to Mumbai where Prime Minister Modi is addressing the Global FinTech Fest 2026 event.
2: अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की। अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है। इसी आग्रह के साथ आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: Early in the day, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara in Gujarat. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the full completion and operationalization of the freight corridor network. Mr. Modi also flagged off freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umbergaon and New JNPT along with a new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail grid.
2: आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: During the program, Mr. Modi also laid the foundation stone for three railway expansion projects worth over 9,700 crore rupees. He addressed a massive public rally following the inauguration of the newly built BJP office in Navsari. He called upon citizens and public representatives to turn

0: on social service and cleanliness into an effortless everyday habit while ensuring the last mile reach of developmental schemes. Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with numerous leaders during the BRICS summit, which will be held on 12th and 13th of this month in New Delhi. External Affairs Ministry spokesperson Ranveer Jaiswal said this during a media briefing in New Delhi today. On Russia-Ukraine conflict, the spokesperson said India is in touch with both the Ukrainian and Russian sides and is trying to see if there are ideas and suggestions that can contribute to the cessation of the conflict. Speaking on devastating flash floods in Nepal, Mr. Jaiswal said that India has expressed solidarity and sympathy with the people and government of Nepal. He added that India has responded promptly and will continue to support relief, rescue and reconstruction efforts. Mr. Jaiswal said 95 tons of relief material has so far been sent by 7 aircraft and some more relief material will be dispatched soon. Mr. Jaiswal said India-China ties are gradually moving in a positive direction. He added that this gradual normalization of ties, people-to-people ties, are very important. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin will hold bilateral talks on the sidelines of BRICS summit. Addressing media at a virtual briefing in New Delhi, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said both leaders are expected to discuss issues of mutual interest. Mr. Peskov said Russia considers India a very important player in the global majority. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Colombo today on a three-day visit to Sri Lanka aimed at deepening bilateral defence and maritime cooperation. During his visit, the Defence Minister will hold talks with the Sri Lanka's leadership on various issues. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय संध्या के 7:10 हुए हैं. श्रोताओं, आप सुनिए कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत एलीट इंग्लिश स्कूल तवांग के 8वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी थ्रिंग चोटन से एक हिंदी कविता. कविता का शीर्षक है ये सब कठिन समय नहीं है.
2: नमस्ते, मेरा नाम थ्रिंग चोटन है. मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ. मेरी स्कूल का नाम है एलीट इंग्लिश स्कूल. आज मैं आपको रचयिता जया चंदवानी की एक कविता सुनाना चाहती हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं. नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं. अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है. अभी भी चलती हुई पति थामने को बैठा है हाथ एक. अभी भी भीड़ है स्टेशन पर. अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक. जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया. अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को. अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर. नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं. धन्यवाद.
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत एलीट इंग्लिश स्कूल तवांग के 8वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी थ्रिंग चोटन से एक अंग्रेजी कविता, क्षमा करें, एक हिंदी कविता. ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय संध्या के 7:11 हुए हैं. चलिए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से का. आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे दिल का रिश्ता फिल्म के चंद नगमे. तो चलिए कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाजों में. दिल का रिश्ता फिल्म के इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने.

अगला नगमा पेश है अलका याग्निक की और कुमार सानू के आवाजों में, बोल समीर अंजान के और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए अलका याग्निक की आवाज में, गीतकार शब्बीर वरविंद्रा और संगीत नदीम श्रवण का।

0: दिल का रिश्ता फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:25 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग में आज आप सुनेंगे तवांग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री टाशी टुंडुप और मोन्यूल सुपर लीग सचिव श्री उर्गेन दोर्जी से ग्यालवा सांगयांग ग्यासो हाई अल्टीट्यूड स्टेडियम तवांग में आयोजित मोन्यूल सुपर लीग के दूसरे संस्करण के शुभारंभ विषय पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दोर्जी ड्रेमा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी खेल की जो सिर्फ मैदान में खेला नहीं जाता बल्कि जुनून, जोश और सपनों से खेला जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फुटबॉल खेल की। तवांग की खूबसूरत वादियों और ऊंचाई पर स्थित ग्यावा छायांग ग्याचो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम में एक बार फिर गूंजने वाली है फुटबॉल खेल की रोमांचक आवाज, क्योंकि दस्तक दे रहा है मोन्यूल सुपर लीग का दूसरा संस्करण। तो आखिर इस बार मोन्यूल सुपर लीग कितना खास होने वाला है, क्या नई प्रतिभाएं हमें देखने को मिलेंगी और इस लीग को लेकर आयोजकों की क्या तैयारियां और उम्मीदें हैं? तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में उपस्थित है मोन्यूल सुपर लीग के आयोजक यानी तवांग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन श्री टाशी दुंडुप और श्री उर्गेन दोर्जी, मोन्यूल सुपर लीग सेकेंड एडिशन के चेयरमैन। तो आप दोनों का हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: चलिए तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल मेरा उर्गेन जी आपसे रहेंगे कि मोन्यूल सुपर लीग की शुरुआत करने के पीछे मुख्य उद्देश्य और प्रेरणा क्या थी? हालांकि अब की बार मोन्यूल सुपर लीग का दूसरा संस्करण है, फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: श्रोताओं का मैं हार्दिक टशी दिले कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे मोन्यूल सुपर लीग है, ये हमारे सेकंड एडिशन है। हमने इसको लास्ट ईयर शुरू किया था, तो इसका पीछे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे जितने भी जो मन रीजन के जो यूथ जो फुटबॉल में रुचि रखता है उन सबको एक प्लेटफॉर्म देने का। और दूसरा है आज के जो युवा है कहीं ना कहीं मोबाइल फोन के साथ और ड्रग्स के साथ ज्यादा लगाव होता है, तो उनको कहीं ना कहीं हम लोग का ये कोशिश रहेगा कि उनको ये सबसे दूर रखे और स्पोर्ट्स से जुड़ा रखने के लिए हमारा एक छोटा सा कोशिश है हमारे तवांग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से।
1: अब मैं टशी दुंडुप जी आपकी तरफ आगे बढ़ रही हूँ। मोन्यूल सुपर लीग सेकेंड एडिशन को लेकर तो हम कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम पीछे की ओर एक बार चलते हैं, बैकड्रॉप पे चलते हैं। मोन्यूल सुपर लीग के जो पहला संस्करण था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ मोन्यूल सुपर लीग जो है कितना सफल रहा और उस दौरान आपको लोगों से और अन्य संस्थाओं से कितना समर्थन और सहयोग मिला?
3: सबसे पहले सभी श्रोताओं को टेस्टी लिए कहना चाहूंगा, पिछले साल जो हम लोग का MSL जो फर्स्ट एडिशन हुआ था इसका बारे में उर्गेंद्र जी ने बताया कि किस लिए कर रहे हैं। पिछले साल हम लोग ने MSL को करवा के काफी अच्छा हुआ। ओपनिंग में हम लोग का इंडिया का फॉर्मर कैप्टन बैजंग भुटिया जी को बुलाया था और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सर भी आए थे, तो काफी अच्छा और काफी सक्सेसफुल रहा, जिसके कारण सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब से शुरू होगा MSL। तो ये काफी बढ़िया टूर्नामेंट रहा पिछले साल में।
1: जी चलिए अब हम मोन्यूल सुपर लीग सेकेंड एडिशन पर चर्चा करते हैं जो कि आगामी 10 सितंबर से शुरुआत करने जा रहे हैं ना। मोन्यूल सुपर लीग सेकेंड एडिशन जो है आगामी 10 सितंबर से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उस दिन को क्या क्या कार्यक्रम आप आयोजन करने वाले हैं और

0: मुख्य अतिथि कौन आने वाले हैं और उस दिन को इनॉगरल मैच किन टीमों के बीच खेले जाने वाले हैं, ये सवाल मैं फिरोजन जी आपसे करना चाहूंगी।
1: मंजुल सुपर लीग के सेकंड एडिशन का ओपनिंग 6 तारीख को होना था, लेकिन हमारे फॉर्मर डीसी संगमुतो सर के अचानक निधन होने के कारण हमें 4 दिन के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। तो हमारे ओपनिंग में हमारे प्रदेश के मंत्री श्री ओजिंग तासिंग जी हमारे बीच पधारने वाले थे, लेकिन टूर्नामेंट पोस्टपोन हुआ जिसके कारण सर यहाँ पर नहीं आ पाया। तो 10 तारीख का जो चीफ गेस्ट है वो आज शाम तक डिसाइड हो जाएंगे। ओपनिंग प्रोग्राम है हमारे डीसी मैडम, यहाँ के एचओडीज, हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट के जेपीसी और जेपीएम सभी को हम लोग ने इन्वाइट किया है। उम्मीद है कि वो सब भी ओपनिंग में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद हमारे गेस्ट आर्टिस्ट रहेगा, हमारे अरुणाचल के एक फेमस बैंड है गिल्टी ग्रीम्स कहते हैं, वो यहाँ पर आपके सामने लाइव परफॉर्म करेंगे। और हमारे तवांग का ही लड़का है संडुप, जो अरुणाचल आइडल सीजन 7 के विनर भी रहा है, तो वो आपके बीच यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। उसके साथ ही काफी ट्रेडिशनल कल्चरल प्रोग्राम रखा गया है। उसके साथ साथ ओपनिंग मैच लास्ट ईयर के फर्स्ट एडिशन के डिफेंडिंग चैंपियन खलकतंग और हमारे तवांग के शो यूनाइटेड के बीच में खेला जाएगा।
0: और उस दिन को कार्यक्रम जो है कितने बजे से शुरू होंगे?
1: हमारे कार्यक्रम 5 बजे से ही शुरू किया जाएगा। कल्चरल प्रोग्राम है वो करीबन 2 घंटा चलेगा। उसके बाद 7:30 से फर्स्ट इनॉगरल मैच किक ऑफ होगा।
0: जी, तो मंजुल सुपर लीग दूसरा संस्करण के लिए तैयारियां जितनी भी होनी थी वो हो चुकी है अब तक, है ना?
1: लगभग सभी ग्राउंड का जो जितना भी तैयारी होना था वो सब हो चुका है। और जो हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से भी ज्यादातर टीम यहाँ हमारे बीच यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक दो टीम आज शाम तक पहुंच जाएंगे। और हमारे जो मैच ऑफिशियल्स है जो अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन के तरफ से यहाँ पर भेजा गया है वो भी कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे।
0: जी जी, अब हम तशीदनुप जी आपकी तरफ फिर आगे बढ़ना चाहेंगे। जैसे कि अब मोनिल सुपर लीग सेकेंड एडिशन में बहुत सारी टीमें हिस्सा ले रहे होंगे, तो उन टीमों के चयन की प्रक्रिया जो है क्या रही और टीमें कहां कहां से आकर इस लीग में शामिल हो रहे हैं?
2: सेकेंड एडिशन MSL में टोटल 8 टीम है, अगर गिना जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज करके किया हुआ है
0: जी।
2: तो सबसे पहले हम लोग का जो 1 लुमला से तकपा यूनाइटेड FC है, इसके बाद सेकेंड तवांग से आपका 2 टीम है, तवांग यूनाइटेड है और एक शो यूनाइटेड है। मोक्तो ST से है रेवला गंगसुंग टीम है, इसके बाद मन दिरांग से मन दिरांग FC है, इसका बाद खलकतंग रूपा FC है, थिरजिनु बुरागांव FC है और एक पोमदिला FC है। तो इसमें आपका जो टीम सिलेक्शन का है वो हम लोग पहले मीटिंग भी कराया है, तो इसमें किस तरह से आपको प्लेयर लाना है, तो इसमें हम लोग ने टोटल हायर प्लेयर जो है 6 रखा हुआ है, जो कि आप इंडिया का अंदर से आप कहीं से भी प्लेयर को लेके आप खेलवा सकते हैं। और बाकी जो प्लेयर है वो जो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज का लड़का लोग ही होना पड़ेगा, इस तरह का हम लोग ने एक बनाया हुआ है। और 9 तारीख को MC मीटिंग भी होगा, तो उसमें वो लोग को सब कुछ बता देंगे उस दिन
0: जी। इस लीग में हिस्सा लेने वाले टीमों को हिस्सा लेने के लिए एंट्री फी आपने कितने रखे हैं?
2: मंजुल सुपर लीग में हम लोग का एक फ्रेंचाइजी होता है।
0: अच्छा।
2: तो हर साल वो लोग को एक फ्रेंचाइजी खरीदना पड़ता है हम लोग। अच्छा। से तो तकपा पांचिन हो गया, मन दिरंग हो गया, खलकतंग हो गया, छिजिनु, ये सब पहले से हम लोग का साथ में फ्रेंचाइजी ले चुका है। और बाकी जो कुछ नया टीम है तो वो इस पर लेना पड़ेगा। तो हम लोग का ऐसे है, हम लोग का साथ में 3 साल का एक MOU होता है, तो इसमें आपका 1 लाख का आपका फ्रेंचाइजी होता है। तो इसके बाद रिन्यू के लिए हर साल उसको जब टूर्नामेंट होगा तो हम लोग 50,000 करके लेते हैं।
0: जी जी जी, इसमें क्या है कि एक ही संस्था पूरे टूर्नामेंट को आयोजन करने में थोड़ी सी तकलीफ होते होंगे, तो आपके साथ और कोई को पार्टनर या प्रायोजक किसके सहयोग है? मैं ये उर्गेन जी से करना चाहूंगी सवाल।
1: हमारे फर्स्ट एडिशन से ही हमारे इवेंट पार्टनर रहा है ड्यूरेक्स दिबार एंड बी स्टॉक्स, जो वो हमारे मुख्य पार्टनरशिप में है। उसके साथ हमारे तवांग के जितने भी जो बिजनेस है और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स लोग है तो वो भी हमें को स्पॉन्सर के तौर पे सपोर्ट करता है। और खास तौर से हमारे दोनों एडिशन में हमारे मुख्य रूप से ऑनरेबल CM श्री पेमा खांडू जी का काफी योगदान रहा है, और उनका सपोर्ट से ही ये मुमकिन हो पाया है कि मतलब हम सेकंड एडिशन को भी ऑर्गेनाइज कर सके। तो इसमें मुख्य रूप से हमारे पार्टनर है ड्यूरेक्स दिपार्ट एंड पीस, और बाकी जो को स्पॉन्सर्स है वो कोई भी कर सकता है, जैसे कोई बिजनेस करता हो कि यहाँ के होटलर्स हो या, तो उसमें हम लोग भी ये करता है कि उनका बिजनेस है उनको हम लोग वहाँ पर ग्राउंड में प्रमोट करता है, चाहे वो बैनर के रूप में हो चाहे वो सोशल मीडिया के रूप में हो। तो इसमें जैसे कि हमारे त्विलो बूटी है वो हमारे होटल पार्टनर्स है, जितने भी जो हमारे बाहर से जो गेस्ट आते हैं उनकी तरफ से यहाँ पर स्पॉन्सर किया गया है
0: जी। और पूरे लीग के दौरान कितने मैच खेले जाने वाले हैं?
1: ये एक लीग है तो जैसे चेयरमैन सर ने बताया कि कुल 8 टीम है, तो यहाँ पर सभी के साथ लीग खेला जाएगा, पूल में डिवाइड नहीं

0: किया गया है, तो इसलिए हर टीम के साथ खेला जाएगा। करीबन अभी तक में हमारे 8 टीम है, तो फाइनल तक में हमारे 32 लीग हो रहा है। तो ओपनिंग में एक ही मैच होगा, बाकी दिनों में आपको यहाँ पर हर दिन दो दो मैच होगा। एक मैच 11 बजे से शुरू होगा और दूसरा मैच जो है वो 2 बजे से शुरू होगा।
1: जी जी जी, क्योंकि हमारे तवांग के लोग जो है, हमने ये बात जो है पहले भी किसी के साथ जिक्र की थी कि अन्य खेल के तुलना में फुटबॉल को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं हर वर्ग के लोग, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो। इस दौरान बहुत सारे लोग आएंगे देखने के लिए मैच, तो उसके लिए आपने टिकेटिंग सिस्टम रखे हैं, आपकी बार रखे हैं, तो टिकेटिंग का जो प्राइस है क्या रखे हैं?
0: ये जो टिकेटिंग सिस्टम है, जो मेन मोटिव रखने का जो रीजन है कि क्योंकि इस टूर्नामेंट का कोई पर्टिकुलरली ना गवर्नमेंट से ना किसी से फंडिंग नहीं है, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कल को भी जाके ये टूर्नामेंट को सर्वाइव खुद से कर सके। तो इसीलिए हम लोग ने एक बेसिक टिकट यहाँ पर रखा है, तो वो हमारे ओपनिंग का दिन और क्लोजिंग का दिन में 100 रुपए पर हेड होगा। सीनियर सिटीजन है उनको फ्री होगा एंट्री, और जो हैंडीकेप है उनको फ्री एंट्री होगा, और जो बच्चे है जो अंडर 9 साल से छोटा है तो उसको फ्री एंट्री दिया जाएगा। और लीग मैच के दौरान 50-50 रुपए का टिकट रखा गया है।
1: जी जी, तो टिकेटिंग सिस्टम को लेकर आपने हर क्षेत्र के लोगों पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से ध्यान रखा गया है। और अब मैं अगला सवाल फिर राशि धनुप जी आपसे करना चाहूंगी कि अब की बार यानी मॉन्यूल सुपर लीग के सेकेंड एडिशन के जो विनर होंगे, जो विजय प्राप्त करने वाली टीम होंगे, उस टीम के लिए कितने धनराशि का इनाम रखे हैं?
2: पहले साल भी वही था 6 लाख, तो इस बार भी विनिंग प्राइस 6 लाख ही होगा। और आपका जो सेकंड प्राइस है वो जो रनर्स अप होगा उसका 3 लाख होगा, और जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है जो इस बार का जो सबसे बेस्ट प्लेयर होगा उसको हम लोग का तरफ से एक हीरो एक्स प्लस एक बाइक होगा, और बाकी बेस्ट डिसिप्लिन टीम होगा, बेस्ट गोलकीपर होगा, हाईएस्ट स्कोरर होगा, और हर लीग मैच के बाद जो सबसे अच्छा खेला है उसको हर लीग में एक एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
1: जी, और खिलाड़ियों की फिटनेस और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए आपने किस तरह की तैयारियां और व्यवस्थाएं कर रखे हैं?
2: ये खिलाड़ी का जो स्वास्थ्य और उसका जो हेल्थ के लिए हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिस से बात भी कर चुका है, तो हम लोग यहाँ पे जब मैच शुरू होने से पहले एम्बुलेंस ग्राउंड में आके रहेंगे, उनके साथ नर्स रहेंगे और फिजियो रहेंगे, तो अगर ज्यादा इशू होता है तो उसको हम लोग फिर एम्बुलेंस करके उसको मेडिकल लेके जाएगा।
1: जी जी जी, और आप दोनों ने बताए कि अनुल सुपर लीग के दूसरे संस्करण में हिस्सा लेने के लिए टीमें बहुत सारे खिलाड़ियां बाहर से आ रहे हैं, तो उनके लिए रहने की व्यवस्था जो है किस तरह से करे हुए हैं? ये सवाल उर्गिन जी आपसे रहेंगे।
0: टूर्नामेंट जो फर्स्ट एडिशन हुआ था तो उसमें हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से अकोमोडेशन हम लोग ने प्रोवाइड किया था, लेकिन क्योंकि काफी टीम बाहर से आ रहा है तो फाइनेंशियली भी काफी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इस पर हम लोग ने जो अकोमोडेशन है हम लोग ने यहाँ पर लोकली हम लोग ने सपोर्ट किया है, और बहुत सारे होटलर्स को हम लोग ने रिक्वेस्ट करके कि एक मिनिमम प्राइस में उनको मतलब एकोमोडेशन देने के लिए कोशिश किया है। उनका जो मिनिमम जो चार्ज होगा वो जो क्लब ओनर है वही पेमेंट करेंगे, और अगर किसी क्लब का कुछ अलग से इश्यूज रहता है तो हमारे कमेटी के ओर से उनको पूरा फाइनेंशियली हम लोग मदद करने के लिए कोशिश कर रहा है, और किसी को पर्टिकुलरली किसी को स्पॉन्सर ढूंढ के हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का तरफ से इस तरह से दे रहा है, और ओवरऑल जो यहाँ पर रहेगा फूडिंग और एकोमोडेशन पूरा जो क्लब ओनर है वही बियर करेंगे।
1: जी, हमारे तवांग जो है प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, इस खूबसूरती को बरकरार रखना हम सभी के कर्तव्य है। और स्टेडियम में मॉन्यूल सुपर लीग के दौरान बहुत सारे लोग जमा होंगे, बेशक बहुत सारे कूड़े कचरे फैलाएंगे, तो स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं?
0: क्लीनिंगनेस को क्योंकि पूरा तवांग का एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है इसको लेके, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारे पर्टिकुलर हमारे ऑर्गेनाइजेशन भी इसके ऊपर में काफी हम लोग काम करता है, तो ये पर्टिकुलर हमारे जो टूर्नामेंट को लेके हम लोग ने वहाँ पर पूरा ग्राउंड में डस्टबिन इंस्टॉल किया गया है। हालांकि हमारे वहाँ पर ग्राउंड में प्लेयर्स के लिए तो हमारे टॉयलेट का सुविधा है, लेकिन ऑडियंस के लिए अभी तक में हमारे वहाँ पर सुविधा नहीं है, लेकिन टेम्पोरेरी बेसिस पे हम लोग का यूडी के साथ में हम लोग ने मिलकर वहाँ पर करीबन 8 टॉयलेट इंस्टॉल किया गया है, तो उसमें पानी का भी अच्छा से सुविधा दिया गया है। तो मैं जो भी वहाँ पर ऑडियंस आएंगे उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप कहीं वॉशरूम यूज करने जाता है तो वहाँ पर पानी का सही से इस्तेमाल करें, और आप कुछ भी खाने पीने के लिए लेके आता है तो वहाँ पर ग्राउंड के चारों तरफ डस्टबिन हम लोग ने इंस्टॉल किया गया है, तो आप वहाँ पर डस्टबिन यूज कीजिए। और हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से भी एक पर्टिकुलरली हम लोग ने एक कमेटी फॉर्म करके रखा हुआ है जो इसके ऊपर ही ध्यान देगा कि जैसे मैच खत्म होता है तो जो गैलरी है उसको साफ सफाई करने के लिए, और जो हमारे प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम है, प्लेयर्स का जो टॉयलेट है, वो सबको साफ सफाई रखने

0: के लिए हम लोग ने एक अलग से कमिटी भी फॉर्म किया है और ग्राउंड के चारों तरफ भी आप जब आएंगे तो देखने के लिए मिलेंगे कि वहां पर हम लोग ने डस्टबिन भी इंस्टॉल किया गया है और बाथरूम भी वहां पर टेम्पररी बेसिस में हम लोग ने इंस्टॉल किया गया है।
1: जी जी, मॉन्यूल सुपर लीग के जो पहला एडिशन रहा उस दौरान सारे मैचेस आपने अच्छी तरह से देखे होंगे, तो बहुत सारे प्लेयर्स हमारे मौन क्षेत्र से आए थे, भाग लिए थे उन्होंने, तो आपको क्या कभी ऐसा लगा कि उन खिलाड़ियों में से, उन युवा में से आगे जाकर कोई भी खिलाड़ी राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर आगे जाने की संभावना या क्षमता दिखाई दी है उनमें?
0: ये आपने काफी अच्छा सवाल किया है। सब फिटनेस कर सकता है कि हमारे तवंग जो है, हालांकि सबके अंदर में काफी क्षमता रहा है लेकिन कभी आज तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है जहां पर हम लोग अपना यूथ दिखा सके। तो ये मंजुल सुपर लीग और हमारे 15 अगस्त के फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान हम लोगों को मतलब ऐसा बहुत सा यूथ मिला है जो मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आज के डेट में हमारे बहुत सा यूथ फुटबॉल में कोचिंग ले रहा है। ये हमारे मंजुल सुपर लीग या हमारे 15 अगस्त के जो टूर्नामेंट है उसका ही देन है कि फर्स्ट टाइम हमारे तवांग से किसी प्लेयर्स को किसी दूसरा क्लब में हायर किया है। मैं शायद उन प्लेयर का नाम तो शायद भूल रहा हूँ लेकिन वो एक हमारे तकपनेंग क्षेत्र से है जिसको इस पर नमसाई में हमारे तवांग से उसको साइन किया गया है INL के लिए।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: ये हमारे पूरे तवांग के लिए गर्व की बात है कि हर साल हम लोग जब अच्छे प्लेयर की बात करते हैं तो हमें बाहर से बुलाना पड़ता है, तो लेकिन इस बार से हमारे कोई लड़का हमारे तवांग से कोई दूसरा क्लब में अपने मतलब स्किल से वो वहाँ पर सेलेक्ट हुआ है।
1: अच्छा।
0: तो इन फ्यूचर भी मैं ये हमारे मंजुल सुपर लीग के दौरान हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का यही रहेगा कि जो जिस यूथ के अंदर सचमुच में टैलेंट है उसको प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। तो सभी यूथ से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि आज आप खेल से जुड़े रहे।
1: जी, और इस बीच तशीदनुप जी, एक बार फिर आपसे एक सवाल है मेरा कि हमारे ग्यावा छायंग गेसहाई एल्टीट्यूड स्टेडियम जो है बेशक बहुत सुंदर है और जगह भी बहुत बड़े है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि हमारे तवांग के लोग जो है फुटबॉल को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। तो हमने हाल ही में देखे थे कि 33वां मेराग्लामा लॉटरे गेट्सो कप के फाइनल्स के दिन में, 15 अगस्त के दिन में बहुत सारे लोग हजारों तादाद में आए थे कि उनको भेजने के लिए जगह की कमी पड़ गई थी। सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे, और आपको कभी लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और बड़ा करना चाहिए, और आपने सरकार को इस बारे में कोई प्रस्ताव देने के लिए सोचे हैं या दे रखे हैं, इस बारे में बताइए।
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। हर साल यही होता है कि 15 अगस्त के दिन काफी लोग आ जाते हैं, फाइनल देखने के लिए आते हैं। तो हम लोग ने बहुत ही महसूस किया है कि स्टेडियम जो गैलरी है, जगह है, वो काफी कम है। हम लोग TDSA ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को, जो फर्स्ट एडिशन में जब वो आए थे चीफ गेस्ट होके, तो उसमें हम लोग ने दिया था। और हम लोग ने उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग ने CM साहब को एक मेमोरेंडम भी दिया है फर्स्ट एडिशन के मंजूर सुपर लीग में। तो CM साहब ने पब्लिकली भी कहा था कि हम इसको बहुत जल्दी करेंगे। फिर हम लोग ने दोबारा CM साहब से भी मिला है, तो शायद कुछ टेक्निकल कुछ इशू हुआ होगा क्योंकि अभी तक सेंक्शन होके नहीं आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द सेंक्शन हो जाएंगे। अगर वो सेंक्शन होता है तो गैलरी है उसका भी एक्सटेंशन करने के लिए, और उसको हम लोग ने सोचा है कि आपका कोम्पा साइट और ये ब्रिगेड साइट में जो बैठने के लिए इतना जगह अच्छा नहीं है, तो उसको हम लोग थोड़ा उठा के ऊपर से काफी आदमी बैठ सकेंगे, जिसके कारण अब वहाँ पे दिखे जो यिग्गा छजन गोम्पा का साइड में है वहीं पे आदमी बैठ सकता है, और इस तरफ गैलरी साइड में है और बीच में जो बैठने के लिए जगह नहीं है। तो इसको हम लोग ने मेमोरेंडम भी दिया हुआ है, तो देखते हैं बहुत ही जल्द हमको लगता है कि CM साहब इसका ऊपर काम करेंगे।
1: जी जी, और आपकी जो मॉन्यूल सुपर लीग दूसरे संस्करण के समापन समारोह जो है कितनी तारीख को होने जा रहे हैं, और उस दिन को, क्योंकि पिछले बार हमने देखे कि आपने प्रसिद्ध हस्तियों को भी आमंत्रित किए थे, तो इस बार की क्या योजना है?
0: ये हमारे सेकंड एडिशन जो क्लोजिंग सेरेमनी, अगर मौसम या सब कुछ सही रहा तो हम हमारे 29 को हमारे क्लोजिंग सेरेमनी होने जा रहा है। तो उसमें हम लोग ने, क्योंकि ये एक फुटबॉल से रिलेटेड है, तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से, हमारे जो पैट्रन है ऑनरेबल MLA की तरफ से भी ये कोशिश किया गया था सुनील छत्री जी को हम यहाँ पर इन्वाइट करें, लेकिन उनका कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो इस पर वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फाइनल के दिन किसी सेलिब्रिटी को हम यहाँ पर जैसे भी वो इन्वाइट कर सके, लेकिन इसमें भी फिर एक फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अभी तक फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं, और हमारे जो स्पॉन्सर्स है कि अभी इतना नहीं है, तो जिसका वजह से हम लोग इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी तो हम नहीं बुला पाएंगे, लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे कि क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे सभी फुटबॉल दर्शक के लिए हम यहाँ पर कोई नामी हस्ती को बुला सके।
1: जी, और अब हमारे आज के यह कार्यक्रम है इसके समय समाप्त होने जा रहे हैं, तो आज आप दोनों ने समय निकालकर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में

0: हमारे कार्यक्रम में, इसलिए मॉन्यूल सुपर लीग सेकेंड एडिशन के तैयारियां से लेकर समापन समारोह तक का सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
1: थैंक यू।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे तवांग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री ताशी डुंडुप और मोन्यूल सुपर लीग सचिव श्री उर्गेन दोर्जी से। गलवा छांगयांग ग्यासो हाई अल्टीट्यूड स्टेडियम तवांग में आयोजित मोन्यूल सुपर लीग के दूसरे संस्करण के शुभारंभ के विषय पर हुई भेंट वार्ता, उनसे भेंट करता थे दोर्जी ड्रेमा। इसके साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मीनाक्षी मजुमदार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कड़ी सुरक्षा के बीच ईटानगर पहुंचे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दोनीपोलो एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कल अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के एक विशेष सत्र में शामिल होंगे और विधानसभा गैलरी सह संग्रहालय का दौरा करेंगे। वे ईटानगर में नियदर नामलो जवाहरलाल नेहरू राज्य संग्रहालय और सुनने व देखने में अक्षम लोगों के लिए दोनीपोलो मिशन स्कूल का भी दौरा करेंगे। राज्य विधानसभा ने आज 3 अहम बिल पारित किए। अरुणाचल प्रदेश माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिल 2026 का मकसद राज्य में एमएसएमई को शुरू करने और चलाने के लिए ज्यादा सुविधाजनक माहौल बनाना है। इस प्रस्तावित कानून में एमएसएमई को कुछ मंजूरियों को निरीक्षणों से छूट देने का प्रावधान है, ताकि समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके, रोजगार पैदा किए जा सके और उद्यमियता को प्रोत्साहित किया जा सके। ये कानून मौजूदा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस कानून के प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है, खासकर उन प्रावधानों में जो नेशनल बिल्डिंग कोड के संदर्भ से जुड़े हैं। अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल में होलोंगी एयरपोर्ट के आसपास नई टाउनशिप के नियोजित विकास के लिए एक अथॉरिटी बनाने का प्रस्तावित है। यह अथॉरिटी एयरपोर्ट एरिया में टाउनशिप के विकास की योजना बनाने, समन्वय करने, उसे लागू करने, उसकी निगरानी करने और उसके लिए फंड की व्यवस्था करने के साथ साथ शहरी सेवाओं के प्रबंधन और निगरानी के लिए भी जिम्मेदार होगी। आज राज्य विधानसभा में जीरो आवर चर्चा के दौरान विधायक कुमार वाई के सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि किसी भी संगठन की ओर से बंद और आह्वान करना गैर कानूनी है। इससे राज्य के विकास में भारी बाधा आती है और बड़ा आर्थिक नुकसान भी होता है। आर्थिक नुकसान का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि हाल ही में बुलाए गए बंद से राज्य में अपने संसाधनों और पर्यटनों पर सीधा असर पड़ा है। इंडिगो जैसे कॉमर्शियल उड़ानें खाली चली और उनके संचालन में रुकावटें आई। इस चलन को रोकने के लिए श्री नातुंग ने कहा कि सरकार अरुणाचल प्रदेश प्रॉपर्टी एक्ट 2020 जैसे कानूनों को सख्ती से लागू करती है। उन्होंने ये भी कहा कि युवा पीढ़ी किसी भी तरह से बंद के आह्वान का समर्थन नहीं करती है। श्री नातुंग ने विधायकों से बंद के आह्वान का सख्ती से विरोध करने और विभिन्न संगठनों से राज्य सरकार के साथ रचनात्मक बातचीत शुरू करने का भी आह्वान किया है। राज्य विधानसभा ने आज पूर्व विधायक तालोंग तागू को श्रद्धांजलि दी, जिनका 19 मार्च को आलो स्थित उनके आवास पर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। श्रद्धांजलि सभा में बोलते हुए स्पीकर तेसाम पोंगते ने कहा कि श्री तागू एक नेक दिल इंसान और समर्पित जनप्रतिनिधि थे और अरुणाचल प्रदेश के शुरुआती लोकतांत्रिक और प्रशासनिक विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आज उल्लास साक्षर पखवाड़ा के तहत सरकारी प्राइमरी स्कूल रोनो दोईमुख में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा अधिकारी, पंचायत नेता, शिक्षक,

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं अब सुनिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है देर पतंग गुजरात से धीरज वीर रबरी ने। आपकी फरमाइश पे पेश है प्रेम पर्वत फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत, बोल जान निसार अख्तर के और संगीत जयदेव का।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है वाडिंगखेरा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोरा, मुरादाबाद दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तानवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह से आई मिलन की रात फिल्म के नगमे का। इस नगमे को लिखा है शैलेंद्र ने, गाया किशोर कुमार ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। हेलम असम से ज्योति सुरेन और हितेंद्र दास की फरमाइश पर सुनिए जमीर फिल्म से किशोर कुमार का गाया नगमा। साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है सपन चक्रवर्ती ने।

अगला नगमा सुनिए दातारंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। मलवा रेडियो श्रोता संघ हिंगरी रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश दाकट नायमा, राजूभाई दाकट, युवराज सिंह दाकट और शिवांगी दाकट के फरमाइश पर सुनिए जीने की राह फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

से सोनम नरबू, नीमा सोनम और केजांग सरिंग ने कभी अजनबी थे फिल्म से लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का गाया गीत, बोल देवखोली के और संगीत विजय सिंह का।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है निम्न बाद जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोरा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करणजीत कौर ने। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत है हीना फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत, बोल एवं संगीत रविंद्र जैन का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम दिवस के विशेष सत्र की कार्यवाही की समीक्षा। तत्पश्चात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित न्यूज़ @9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के साथ और रीजनल न्यूज यूनिट आप सभी के लिए लेकर आया है 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 7वें विशेष सत्र 2026 के पहले दिन की बैठक पर आधारित ये खास पेशकश। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में आज 8वीं विधानसभा के विशेष 7वें सत्र की शुरुआत हुई। सत्र की शुरुआत में पूर्व विधायक तालोंग तागु को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लंबी बीमारी के बाद गत 19 मार्च को उनका निधन हुआ। शोक संदर्भ प्रस्तुत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगते ने कहा कि तालोंग तागु एक दयालु व्यक्ति और समर्पित जनप्रतिनिधि थे। अरुणाचल प्रदेश के प्रारंभिक लोकतांत्रिक और प्रशासनिक विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिवंगत के निधन से राज्य में एक महान नेता को खो दिया है। शोक संदर्भ में शामिल होते हुए मंत्रियों एवं विधायकों जैसे निन्नोंग ईरिंग, ओजिंगता सिंह एवं केंटो जिने ने उन्हें समर्पित समाज सेवी और सुधारक बताया। उन्होंने कहा है कि दिवंगत ने चुनावी राजनीति की सीमाओं से आगे बढ़कर समाज के लिए कार्य किया। विधानसभा के दिवंगत नेता के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा गया और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। तालोंग तागु का जन्म मोलोंग गांव में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1969 में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया जब वे आलो नॉर्थ जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने। वर्ष 1977 तक वे इस पद पर रहे। इससे पहले उन्होंने असम राइफल्स में सेवा प्रदान की थी और सूबेदार मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अधिकारियों के अनुसार विधायक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान वर्ष 1982 में योमचा उपमंडलीय मुख्यालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा क्षेत्र में कई प्रशासनिक और शैक्षणिक पहल भी शुरू की गई। पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए शून्यकाल चलाया गया, जिसके तहत विपक्ष के नेता कुमार वाय ने एमएसएमई मंत्री न्यातो दुकाम से प्रश्न किया कि युवाओं के लिए इस सेक्टर में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। साथ ही कहा कि सरकार विशेषकर उद्योग विभाग, कृषि और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा सब्सिडी और ऋण के माध्यम से सहायता देने की बात की। उन्होंने कहा है कि सरकार की योजनाओं के तहत 50% राशि ऋण के रूप में और 50% सब्सिडी के रूप में दिए जाने की बात कही गई है। श्री वाय ने प्रश्न किया कि अरुणाचल प्रदेश में भूमि स्वामित्व व्यवस्था अन्य राज्यों से अलग है, ऐसे में ऋण प्राप्त करने के लिए भी क्या प्रावधान किए गए हैं। जवाब में राज्य के उद्योग एवं एमएसएमई मंत्री न्यातो दुकाम ने कहा है कि राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में कई क्षेत्रीय और स्थानीय चुनौतियां हैं। इन्हें दूर करने तथा उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने अरुणाचल प्रदेश माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन एस्टैब्लिशमेंट और ऑपरेशन बिल 2026 सदन में पेश किया है, जिसे सदन ने पारित कर दिया। उन्होंने कहा है कि एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार से अरुणाचल प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में अपना योगदान बढ़ा सकेगा। साथ ही इसका सबसे बड़ा लाभ राज्य के युवाओं को मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर भी उपलब्ध कराता है। श्री दुकाम ने कहा है कि केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार का एकमात्र विकल्प नहीं है। हर वर्ष बड़ी संख्या में युवा शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां सीमित होने के कारण सभी को इसमें अवसर मिलना संभव नहीं। ऐसे में युवाओं को उद्यमिता और निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार कौशल विकास पर भी विशेष जोर दे रही है। युवाओं को आतिथ्य, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 40 से 45 युवकों को प्रशिक्षण के लिए जापान भेजा गया है, जबकि पिछले वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों से 50 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में जल विद्युत परियोजनाएं भी आ रही है। इन परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उन्हें आवश्यक कौशल से लैस करना जरूरी होगा। उन्होंने सदन में सदस्यों से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में युवाओं और आम लोगों को एमएसएमई तथा स्वरोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करें और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। मंत्री ने विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए ऋण और भूमि स्वामित्व से जुड़े मुद्दे पर कहा है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी और बैंक ऋण का प्रावधान होने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश में भूमि को मॉर्गेज करने से जुड़ी व्यवस्था एक व्यवहारिक चुनौती है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई क्षेत्र के लिए अनुकूल समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों से अपील की है कि वे बिल के क्रियान्वयन में सहयोग करें और जमीन स्तर पर युवाओं को इसके लाभों की जानकारी प्रदान करें। विशेष सत्र के तहत वांगलिंग लुवांगडोंग ने अरुणाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सुविधा स्थापना और संचालन विधेयक 2026 का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में अब तक बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है और कोई बड़ी औद्योगिक क्रांति देखी नहीं गई है। उन्होंने कहा है कि ये विधेयक राज्य में उद्योगों की संभावनाओं को साकार करने की दिशा में महत्व

महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में उद्यमिता, निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के प्रति सोच में बदलाव लाना तथा ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां किसी भी युवा उद्यमी को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए वर्षों तक अलग अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। श्री लवांगडोंग ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र सहित पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का राज्य में स्वागत होना चाहिए तथा अनावश्यक प्रक्रियागत देरी से उन्हें हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। विधेयक में पात्र एमएसएमई की स्थापना और संचालन के लिए कुछ अनुमतियों और निरीक्षणों से छूट का प्रावधान किया गया है, जबकि जन स्वास्थ्य, सुरक्षा, जनजातीय एवं वन अधिकार, श्रमिक कल्याण तथा प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े आवश्यक सुरक्षा उपायों को बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। विधायक ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पास पर्यटन, कृषि और बागवानी उत्पाद, हस्तशिल्प, बांस, फल प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं हैं और राज्य के युवा आबादी भी नए अवसरों की तलाश में है। उन्होंने कहा कि केवल संभावनाएं आर्थिक विकास नहीं लाती, निवेश से आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है, आर्थिक गतिविधियों से उद्यम विकसित होते हैं, उद्यम रोजगार पैदा करते हैं और रोजगार से समृद्धि आती है। उन्होंने कहा है कि विधेयक में राज्य और जिला स्तर पर नोडल एजेंसियों की व्यवस्था प्रस्तावित है जो उद्यमों के लिए एकल समन्वय केंद्र के रूप में काम करेंगी। ये एजेंसियां उद्यम स्थापित करने के इच्छुक लोगों से संबंधित घोषणाएं प्राप्त करने, प्रमाण पत्र जारी करने, रिकॉर्ड बनाए रखने और शिकायतों के समाधान में सहायता करेंगी। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार बताया है। इसके बाद सदन में राज्य के विमानन मंत्री बालो राजा ने अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पारित होने हेतु पेश किया, जिस पर विपक्ष के नेता कुमार वाय द्वारा पूछे गए सवाल, विमानतल क्षेत्र में प्रस्तावित विकास के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होने पर यह भूमि कहां से उपलब्ध अथवा अधिग्रहित की जाएंगी, यदि इसके लिए निजी अथवा सामुदायिक भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो प्रभावित भू स्वामियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कौन सी नीति एवं व्यवस्था निर्धारित की गई है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है। इसके जवाब में श्री बालो राजा ने कहा है कि एयरपोर्ट एरिया डेवलपमेंट के लिए भूमि की आवश्यकता पर उसके अधिग्रहण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति अध्ययन कर तय करेंगी कि विकास के लिए किस प्रकार और किन क्षेत्रों से भूमि ली जानी चाहिए तथा इसके लिए उचित प्रक्रिया और व्यवस्था क्या होगी। उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट एरिया डेवलपमेंट का उद्देश्य केवल विमानतल से विस्तार तक सीमित नहीं बल्कि इसके माध्यम से होलोंगी एयरपोर्ट के आसपास आधारभूत ढांचे का विकास करते हुए राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, यात्री सुविधाओं और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इससे क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और अन्य संबंधित क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य में हवाई संपर्क और विमानतल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए होलोंगी के साथ साथ पासीघाट और तेजू जैसे अन्य प्रमुख हवाई अड्डों के विस्तार एवं विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई सेवाओं और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाए। श्रोताओं, 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 7वें विशेष सत्र में बंद कोल से जुड़ा मुद्दा भी विपक्ष के नेता कुमार वाई द्वारा उठाते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न संगठनों और यूनियंस द्वारा बंद के आह्वान के मुद्दे पर सरकार की क्या नीति है, क्या गैर मान्यता प्राप्त संगठनों या यूनियंस द्वारा बंद का आह्वान किए जाने पर उसे रोकने के लिए कोई ठोस व्यवस्था की जाएगी ताकि बंद के कारण आम लोगों और विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री मामा नातुंग ने बंद के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन या यूनियन मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त, किसी भी संगठन द्वारा बंद का आह्वान उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी बंद के आह्वान को अवैध माना है। उन्होंने कहा है कि बंद का असर केवल आम जनजीवन तक सीमित नहीं रहता बल्कि इससे समाज के हर क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि पिछली बार बंद के दौरान इंडिगो की उड़ानें यात्रियों के बिना ही वापस लौट गई। इसके बाद एयरलाइन कंपनी की ओर से नुकसान होने और ऐसी परिस्थितियों में सेवाएं जारी रखने में कठिनाई की बात सामने रखी गई। हालांकि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व और हस्तक्षेप से इस समस्या का समाधान कर लिया गया। श्री नातुंग ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए शांति और स्थिरता बेहद आवश्यक है, जबकि बंद जैसी गतिविधियों से विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। सरकार ने हर क्षेत्र में पारदर्शिता, परिवर्तन और बेहतर प्रदर्शन को प्राथमिकता देते हुए कई उपलब्धियां हासिल की है और आगे भी इसी दिशा में लगातार काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार का सम्मान करती है, लेकिन आम जनता के जनजीवन, व्यापार, परिवहन और आवश्यक सेवाओं को बाधित करने वाले बंद से राज्य के हित प्रभावित होते हैं। इसलिए विकास के लिए सभी पक्षों का सहयोग और शांतिपूर्ण वातावरण आवश्यक है। दोस्तों, 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 7वें विशेष सत्र 2026 में आज 3 महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुए, जिनमें अरुणाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सुविधा स्थापना एवं संचालन विधेयक 2026, अरुणाचल प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा संशोधन विधेयक 2026 और अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी विधेयक 2026 शामिल है। उद्योग मंत्री

0: दुकान में अरुणाचल प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सुविधा स्थापना एवं संचालन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। ये विधेयक राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों MSME की स्थापना और संचालन को सुगम बनाने, उद्यमियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने तथा राज्य में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह मंत्री मामा नातुंग ने अरुणाचल प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाना तथा आपात स्थितियों से निपटने की क्षमता को बेहतर करना है। वहीं शहरी मामलों के मंत्री बालो राजा ने अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य राज्य के हवाई अड्डों के आसपास नियोजित एवं समग्र विकास के लिए एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था तैयार करना है। इससे एयरपोर्ट क्षेत्र में आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी और यात्रियों से जुड़ी सुविधाओं के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। सदन में चर्चा और विचार विमर्श के बाद तीनों विधायकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस बीच श्रोता मित्रों, हम आपको यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष 7वें सत्र को कल सुबह 10:15 से भारत के माननीय उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन संबोधित करेंगे। श्रोता मित्रों, आशा है कि 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष 7वें सत्र पर आधारित ये पेशकश आपको पसंद आया होगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी कल इसी अंक के एक और कड़ी के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे SMA रेडियो। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोता, आइए सुनते हैं हिंदी फिल्मी गीत।

इसके साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या एवं न्यूज़ एट 9।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।

0: मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
1: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
5: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026

0: 20 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
2: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
3: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो चार लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
1: बम्बई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया, कहा इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने

0: and India win 5 medals, including 2 gold at the World Para Archery Series in Ahmedabad. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। चलिए अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, शाम 5:40 पर सुनिए आकाशवाणी

कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, शाम 5:40 पर सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन के ईटानगर दौरे पर आधारित विशेष रेडियो रिपोर्ट। कल शाम 7:10 पर हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी और आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिवस के विशेष सत्र की कार्यवाही की समीक्षा रात्रि 8:30 पर। जी हां श्रोताओं, तो यही थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आप श्रोताओं से विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में समाचार के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्रीमती सांगे छोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री थाम त्रिंग, श्री हेमंता स्वर्गिरी और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री अमल कुमार दास के साथ मैं हूं हिंदी उद्घोषक थाम टाशी। समय रात्रि के 9